सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 होने को हैं। आरंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत की राजदूत

0: संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। जीवन एक यात्रा है और आत्मा उस हंस के समान है जिसे एक दिन इस संसार से अकेले ही उड़ जाना है। ये भजन जीवन की नश्वरता और आत्मचिंतन का संदेश देता है। आइए सुनते हैं पंडित कुमार गंधर्व की गंभीर और आत्मिक प्रस्तुति।

0: वंदना कार्यक्रम जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। जब मन से अज्ञानता का पर्दा हटता है, तभी ईश्वर के सच्चे दर्शन होते हैं। ये वंदना हमें भीतर की आंखें खोलने और प्रभु से जुड़ने की प्रेरणा देती है।

0: वंदना कार्यक्रम जारी रहेगा, पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। जब जीवन की राह कठिन लगे, तब प्रभु पर विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। संपूर्ण समर्पण और अटूट आस्था से भरा ये भजन मन को नई शक्ति प्रदान करता है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट।

भक्ति का सबसे सुंदर रूप है संपूर्ण समर्पण। जब भक्त स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, तब जीवन आनंद और विश्वास से भर उठता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं चिंतन बिंदु।
1: मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता से इस कथा का निवेदन करूं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जीवन में आपको अगर यह पंचभौतिक शरीर प्राप्त हुआ है तो संसार में आपको अगर आपके कारण कोई जानता है तब तो इस जीवन का महत्व है, अन्यथा आपके पिताजी के कारण कोई आपको जानता है, चाहे आपके परिवार के बल

0: पुरुष के कारण लोग आपको जानते हैं, तो उसमें आपका कोई सामर्थ्य नहीं है। उसमें आपके द्वारा संसार में जन्म लेना एक तरीके से निरर्थक है। आपको हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से कि हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए जाने के लिए सारे सेनाओं ने अंगद जी से पूछा गया, तो अंगद जी ने कहा, अंगद कहो जाओ मैं पारा जी संशय कज फिर तीन बारा। और नल नील सबसे पूछा गया, जामवन जी से पूछा गया, सबने अपना अपना सामर्थ्य निवेदित किया, परंतु किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं प्राप्त हुआ कि वह लंका जाकर के और माता जानकी जी का पता लगा करके वापस आ सके। उसी समय में एक कोने में बैठे हुए हनुमान जी महाराज सबके द्वारा लंका जाने का जाए जहाँ तक जा सकते हैं इसका वर्णन सुन रहे थे। तब तक अचानक जामवन जी की नज़र उन पर पड़ी और जामवन जी ने कहा कि हनुमान तुम्हें पता है तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा मैं एक बंदर हूँ और मैं आपके साथ जानकी जी को ढूंढने के लिए आया हूँ, बस मुझे यह पता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं आपको कि जो आपके सामर्थ्य को और बलवती करे। और हनुमान जी के जीवन में शायद अगर जामवन जी न मिले होते तो हनुमान जी हनुमान जी न होते। हनुमान जी महाराज से जामवन जी ने कहा तुम पवन के पुत्र हो, पवन तनय बल पवन समाना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं पवन का पुत्र हूँ तो मेरे पिताजी की वैशिष्टता है, मैं तो कुछ हूँ नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि कवन सुकाज कठिन जग माही। तो हनुमान जी महाराज ने जामवन जी से कहा कि मेरी बड़ाई कर रहे हैं जामवन जी महाराज, जब मान बड़ाई प्राप्त होने लगे और आपको लगे कि जो आपको मान प्राप्त हो रहा है आपने उतना कुछ नहीं किया है तो और विनम्र हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं भगवत कृपा। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप इतनी बड़ाई कर रहे हो कि कौन सुकाज कठिन जग माही जो न हो ता तुम पाही। तो हनुमान जी महाराज फिर हाथ जोड़ करके बैठ गए। देखिए ये दोनों है, पहला पिताजी का सामर्थ्य के कारण मेरा सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ा, दूसरा बिना कुछ किए ही बड़ाई हो रहा है उसका भी असर नहीं हनुमान जी पे पड़ा। लेकिन जैसे ही जामवन जी ने कहा कि राम काज लगितो अवतारा सुनते हूँ भयो पर्वताकारा, राम काज है क्या? राम का काज केवल दशरथ के पुत्र राम का कार्य पूर्ण कर लेना, जानकी जी को ढूंढना नहीं है। राम का काज है कि आपके जीवन से आपने जी जहाँ पर आपने जन्म लिया है, जिस गांव में, जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में आपने जन्म लिया है, उन सारे अपने लोगों के बीच में कुछ ऐसा कार्य आप करें जिस राम काज लगे तो अवतारा सुनते हो भयों पर्वताकारा, कि जिस कार्य को करने के बाद आपको संतुष्टि मिल सके, जिस कार्य को करने के बाद आपके सामर्थ्य का वर्णन आपको न करना पड़े। हनुमान जी महाराज जो लंका से वापस आए सीधे जामवन जी से मिले और उन्होंने कहा कि मेरे सामर्थ्य के प्राप्ति में सबसे बड़े सहायक आप ही हो, तो जीवन में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसे हम गुरु माने, क्योंकि हमारे सामर्थ्य को बताने में कोई ना कोई सहायक बना अगर तो निश्चित है जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या, आप कर क्या सकते हैं। समस्या यह है कि हम समझ नहीं पाते हमें करना क्या है, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हमको करना क्या है। और जिस दिन हम यह समझ जाएंगे हमें करना क्या है, जैसे हनुमान जी को समझ में आया राम काज करना है तो पर्वताकार हो गए, वैसे ही अगर हमें कोई सदमार्ग पर कोई मिल गया आपके सामर्थ्य से आपको ज्ञान करा दिया तो निश्चित है आप भी हनुमान जी की तरह विश्व व्याप्त हो जाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 10:20 पर आप सुनेंगे अपनी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। दिन में 1:15 पर समय रहेगा नारी जगत कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा, विषय होगा डिजिटल भुगतान की सुरक्षा, साथ ही डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के विषय में जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बचाव पर भी चर्चा होगी और गृहिणी विशेष में आप सुनेंगे UPI का सुरक्षित उपयोग।

सुगम संगीत के कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:05 से, दिन में 12:55 से और रात्रि 8:15 से।

लोक रंग कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 11:05 से। कलाकार होंगे राम ज्ञान यादव और साथी। लोकधारा कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45 से। कलाकार होंगी रंजना श्रीवास्तव।

ग्राम जगत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:35 से। इसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन। साथ ही एक और चर्चा होगी, विषय रहेगा अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति योजना। गाने सुहाने कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12:30 और पूर्वा सुहाने कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे इसी सभा में सुबह 7:31 से। खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:10 पर। इसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा सोयाबीन की बुआई कैसे करें। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और विनय कुमार की बातचीत आप सुनेंगे। विषय रहेगा फर तोड़ाई के बाद बाग का प्रबंध। साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर लालचंद्र वर्मा की वार्ता। विषय रहेगा बैकयार्ड में मुर्गी पालन। युगल गीतों का आनंद लीजिएगा रात्रि 7:31 से। और गीतांजलि कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:30। देश हमार कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:00 और शाम 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं मानस गान।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषादराज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषादराज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं स्वयं भी

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है

0: csumumbai@gmail.com.
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
4: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
3: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
4: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
5: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रदर्शनं बौद्धिकभक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशियादेशे भारतीयराजदूतस्य सन्दीपचक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिकसम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉ अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राममन्दिरदानवञ्चनप्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परम् उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्यसचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथितदान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् अष्टजनाः निगडिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचारमेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमन्त्री कतरदेशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे USA बेल्जियम वा देशं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री क्षमा करें कि इसको दोबारा सुन लें, इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल

0: खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. The two leaders will also witness the exchange of Memorandum of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The day's engagements will conclude with a state banquet hosted by President Prabowo Subianto in honor of the Prime Minister. Later, Prime Minister Modi will have engagements at the Complex Parlemen Republic Indonesia, highlighting the importance of parliamentary cooperation between the two countries. He will also participate in a community event where he will interact with members of the Indian diaspora. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said that Prime Minister's visit to Indonesia is set to mark a significant upgrade in India's strategic partnership with Southeast Asia's largest economy. He said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
3: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation, and we are also hopeful for opening up new areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in 5 sectors. One would, of course, be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals, and of course, educational and health sectors. More or less, every area of human endeavor will be covered during the Prime Minister's visit.

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास।
2: गाते गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और

0: अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
4: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
3: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
4: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
5: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
6: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
7: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
6: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
7: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
6: गाने के बोल,
7: गीतकार
6: और संगीतकार,
7: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
6: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
7: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
6: गाते
7: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
6: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
8: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन

0: के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
2: प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह जानकारी दी।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपताजी के द्वारा की गई

0: सेवा का अभिनंदन भी किया, उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है।
1: ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
0: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
2: 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इनक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी, इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
1: श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है।
3: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है। मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
1: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
4: कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत उत्सवपूर्ण वातावरण में एक दिन में 35 करोड़ पौधों का वृहद वृक्षारोपण

0: और महायज्ञ आयोजित किया जाएगा।
1: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के कालीघाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंगल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से टनकपुर से पीलीभीत और बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहेब आदि कैलाश और नानकमत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी।
2: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये ट्रेन से जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
5: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरवा सुहानी।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: पूर्वा सुहानी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म है राजनीति, आवाजें हैं आदेश श्रीवास्तव, शशि और रोसली के। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में आपने सुना विकप सिट फिल्म से इस गीत को। बोल थे जावेद अख्तर के और तर्ज तैयार किया था अमित त्रिवेदी ने। पूर्वा सुहानी कार्यक्रम जारी रहेगा, पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

लीजिए सुनिए अगला गीत, फिल्म है जब वे मेट, आवाज़ है श्रेया घोषाल की, गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

0: केके की आवाज़ में अभी आपने सुना ओम शांति ओम फिल्म से इस गीत को। बोल थे विशाल ददलानी के और संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने। पूर्वा सुहानी कार्यक्रम आप सुनेंगे, पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
2: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
1: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
2: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
3: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
4: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
4: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
4: गाने के बोल,
5: गीतकार
4: और संगीतकार
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
4: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
4: गाते
5: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, बोल हैं केके के। स्वर दिया है केके ने, बोल है नीलेश मिश्रा के और धुन तैयार की है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है वो लम्हे।

इस गीत के साथ ही पूर्वा सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहाँ श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के

0: सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals, including 4 gold at under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the Triple Gem, Sri Ratna, expressing gratitude to the Indian community.

0: day in Manchester, opting to bat, India scored 190 for 7 in the stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Pramod. Temple graft to sin. Trust chair Rai and Mishra exit is the lead in the Times of India, while the Hindustan Times headlines, Ram Temple Trust sets big overhaul in motion. The Statesman headlines, PM Modi in Indonesia to strengthen linkage with Indo-Pacific partners. His visit to Indonesia as part of his three-nation tour is widely covered on the front pages of all newspapers, with pictures of the Indonesian president specially receiving the Indian PM as a special gesture. The story of the National Investigating Agency chargesheeting LET chief Hafiz Saeed is widely covered on the front pages of all newspapers. The Pioneer headlines, NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in The Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it. While the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals, including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबोवो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग ثقافتی پروگراموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان گہرے

0: नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे, सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया इस्तकबाल। इसी खबर को रोजनामा इनकलाब और दीगर अखबारात ने भी अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में NIA की ज़िमनी चार्जशीट में हाफिज सईद मुलजिम करार, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा ज़िमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राज़ील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की ज़िंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ।

0: अलग अलग कोई किस्सा जनाब।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट सुपर हिट।
2: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
3: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
4: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
3: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
4: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
3: गाने के बोल,
4: गीतकार
3: और संगीतकार
4: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
3: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
4: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
3: गाते
4: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: हिट सुपर हिट कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म से ये गीत। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल है मजरू सुल्तानपुरी के।

मुकेश की आवाज़ में आपने सुना संगम फिल्म से इस गीत को। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और तर्ज तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं उपकार फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज़ में अगला गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और बोल हैं गुलशन बावरा के।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना सरस्वती चंसेस फिल्म को गीत को। धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने और बोल थे इंदिवर के। आइए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आशा भोसले और आर डी बर्मन की आवाज़ में। फिल्म है कारवां।

देखो देखो वो आ गया।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म से इस गीत को। संगीत दिया था ओपी नैयर ने और बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के। इसी गीत के साथ ही हिट सुपरहिट कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अलीगढ़ और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का।
2: अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा ग्राम सचिवालयों को और अधिक प्रभावी बनाने, ग्रामीणों को राजस्व सेवाएं उनके गांव में ही सुलभ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर जारी कर दिया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार लेखपाल अपने आवंटित ग्राम सचिवालयों में नियमित रूप से बैठक आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम सचिवालयों को ग्रामीण जनसेवा का प्रभावी केंद्र बनाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम सचिवालय में लेखपालों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर लागू किया गया है। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, वरासत, भू अभिलेख सत्यापन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक रूप से तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडीएम प्रशासन सौरभ भट्ट ने बताया कि लेखपाल अपने निर्धारित दिवस एवं समय पर ग्राम सचिवालयों में उपस्थित रहकर राजस्व संबंधी प्रकरणों में आवश्यक मार्गदर्शन, अभिलेखों का सत्यापन, जांच एवं अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित करेंगे। इसे राजस्व सेवाओं के निस्तारण में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा ग्रामीणों को समयबद्ध सेवाओं का लाभ मिलेगा। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी रोस्टर का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम सचिवालय में रोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि ग्रामीणों को लेखपाल की उपलब्धता की पूर्व जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में अस्मिता साइकिलिंग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम सेवा भवन से हुई। साइकिल रैली सेवा भवन से विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसएसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। युवाओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया और कार्यक्रम में फिटनेस व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामघाट रोड स्थित RAF 104 बटालियन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, जवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार ने परिसर में पौधा रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ अन्य अधिकारियों एवं जवानों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण

0: संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में शामिल नल्ले मुन्ने बच्चों ने भी उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण किया और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने का प्रण लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के कस्बा वेसवा निवासी भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो राम गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चिंताबाड़ी के दौरान भारी गोलाबारी के बीच अदम्य साहस, असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण का परिचय देने पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार में शामिल शौर्य चक्र प्रदान किया गया। देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले इस वीर सपूत ने न केवल भारतीय नौसेना बल्कि पूरे अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। वेसवा से राष्ट्रपति भवन तक यह सम्मान हर युवा के लिए प्रेरणा है। अलीगढ़ में 7 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब जिले से भी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर तैयार होंगे। उच्च कोटि के कोचों की देखरेख में खिलाड़ी अपने खेल में निखार लाएंगे, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है,
1: स्मार्ट सिटी अलीगढ़ द्वारा लगभग 60 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें नेशनल लेवल का ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल है। इसके अलावा 4 उसमें बैडमिंटन कोर्ट हैं, इसके अलावा उसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जैसे पिकल बॉल इत्यादि हैं, उनको लाया जा रहा है। लगभग 550 लोगों के बैठने की उसमें दर्शक भीड़ता है।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफलता पूर्वक 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में डूंडा स्थित कार्यालय सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
2: अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
3: झांसी प्रशासन ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों तथा जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जनपद में उत्साहपूर्ण मनाया गया। ऐतिहासिक झांसी किले परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की। उन्होंने योग को स्वास्थ्य जीवन का आधार बताते हुए जनपद वासियों से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। जिले के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में भी सामूहिक योग अभ्यास आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने झांसी प्रवास के दौरान मंडलीय विकास एवं कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अवैध खनन, भू माफिया, ओवरलोडिंग तथा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही झांसी में प्रारंभ किए गए जनसंवाद मॉडल की सराहना करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की। विकास परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसून को देखते हुए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता अभियान तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय बताए। महिला एवं बाल विकास तथा पोषण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार ने झांसी की उपलब्धियों की सराहना की। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने जिले में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, ICDS, कुपोषण उन्मूलन तथा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार तथा आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। जल संरक्षण एवं पेयजल उपलब्धता के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय ने स्वयं पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी, जिससे जन भागीदारी आधारित जल प्रबंधन को नई दिशा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में नए शैक्षिक सत्र के मद्देनजर स्कूल चलो अभियान, नामांकन अभियान तथा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं 100% नामांकन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। रोजगार और औद्योगिक

0: विकास के क्षेत्र में झांसी को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी रहा। प्रशासन द्वारा निवेश औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन करने के प्रयास लगातार जारी है। कृषि विभाग की खरीफ फसलों की तैयारी को लेकर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा कृषि यंत्री योजना की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, संपर्क मार्ग निर्माण तथा रोजगार सृजन के कार्य में तेजी लाई गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरे जिले में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सरकारी विभागों, विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों ने पौधारोपण कर हरित झांसी के निर्माण का संकल्प लिया। श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से झांसी ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जिले के सभी 496 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे झांसी उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा जिला बनने की दिशा में अग्रसर हुआ जहां ग्रामीण क्षेत्र बाल श्रम मुक्त घोषित किए गए। इस अभियान के अंतर्गत हजारों बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ा गया और उनके परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे देश गान।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
6: डॉलकर ही नहीं,
7: किनकर भी मिलता है,
8: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
9: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
10: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
11: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
12: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
11: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
12: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
11: गाने के बोल,
12: गीतकार
11: और संगीतकार
12: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
11: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
12: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
11: गाते गाते
12: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
11: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेजबान फरीदुल्ला खान हाजिर है। हमारा पुरखलूस अदाब कबूल हो, आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ऐसे ही अनगिनत शेरों, अनगिनत गजलों के मालिक जिगर मुरादाबादी, जिन्होंने अपनी गजलों से अपना नाम, शहरे जिगर का नाम रोशन किया। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। सामीन, कुछ शख्सियात का नाम रहती दुनिया तक तारीख के औराख में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाता है, उन्हीं में ये शख्सियत जिगर साहब भी शामिल हैं। आज हम इस प्रोग्राम में लेकर हाजिर हुए हैं जिगर मुरादाबादी की गजल गोई। आज के हमारे मुकर्रर हैं डॉक्टर मिज़बा अहमद सिद्दीकी। समाअत कीजिए ये तकरीर।
2: शेख मोहम्मद अली सिकंदर सिद्दीकी मुतखल्लिस बजिगर मुरादाबादी 15 अप्रैल 1890 में पैदा हुए और 9 सितंबर 1960 में वफात पा गए, मगर इस कलील अरसे में जिगर मुरादाबादी जिगर सोजी व जिगर कावी करते हुए उर्दू गज़ल को वो मुकाम अता कर गए जिस पर प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। जिगर मुरादाबादी बुनियादी तौर पर गज़ल के एक वहबी और वजदानी शायर थे। मुझे उर्दू शेर व अदब के बाज़ नाकदीन की इस राय से काफ़ी हद तक इत्तेफाक़ है कि जिगर के यहाँ न तो अल्लामा इकबाल की तरह फ़िक्र व फ़लसफ़ा है और न ही गालिब की तरह तहदारी। कुल्लियात जिगर के दीबाचे में नामवर नक्काद प्रोफेसर आलम सुरूर लिखते हैं, जिगर के मिजाज में वो फ़लसफियाना गहराई, वो वहदत वहबी, वो संजीदा फ़िक्र नहीं है जो मसलन गालिब और इकबाल के कलाम में है। इसलिए जिगर को गालिब या इकबाल के मेयार पर परखना गलत होगा। मगर ये क्या कम है कि उनके यहाँ शहनशाह मुतग़ज़्ज़िलीन मीर तकी मीर का सा सोज़े जिगर और तड़प शामिल है। उन्होंने हकीम मोमिन खां की तरह गज़ल को गज़ल ही बनाए रखा, अल्लामा इकबाल की तरह न तो फ़िक्र व फ़लसफ़े का बोझ डाला और न ही गालिब की तरह तहदारी पैदा करके हमारी प्यारी सिन्फ़े सुखन गज़ल को शारहीन का मोहताज किया, और न ही नक्कादान शेर व अदब के कलम के वो जौहर अफशानिया का ज़ेरबार किया। जिगर मुरादाबादी की ज़्यादातर शायरी बिलखसूस गज़लिया शायरी

जिनकी राहों से हटाता हूं मैं कांटे, वो लोग अपने तलुओं में चुभा खार समझते हैं मुझे। जिनकी राहों से हटाता हूं मैं कांटे, वो लोग अपने तलुओं में चुभा खार समझते हैं मुझे। मुझको महदूद नजर वाले हैं कहते बेसूद, और पारिक जो हैं शाहकार समझते हैं मुझे। और दरमियां अपने नहीं, ये शेर खास तौर पर समाज फरमाएंगे, दरमियां अपने नहीं रस्म दिलाजारी तक, दरमियां अपने नहीं रस्म दिलाजारी तक, लोग क्यों तेरा गिरफ्तार समझते हैं मुझे, लोग क्यों तेरा गिरफ्तार समझते हैं मुझे। और मेरे साये से भी बचकर हैं गुजरते अहबाब, मेरे साये से भी बचकर हैं गुजरते अहबाब, यानी गिरती हुई दीवार समझते हैं मुझे। मेरे साये से भी बचकर हैं गुजरते अहबाब, यानी गिरती हुई दीवार समझते हैं मुझे। आखिरी शेर मकते का शेर समाज फरमा दे कि मैं समझता हूँ जिन्हें राहते जा ए जावेद, मैं समझता हूँ जिन्हें राहते जा ए जावेद, जान का अपनी वो आजार समझते हैं मुझे। मैं समझता हूँ जिन्हें राहते जा ए जावेद, जान का अपनी वो आजार समझते हैं मुझे। गैर तो साहिब किरदार समझते हैं मुझे, ये जो अपने हैं गुनाहगार समझते हैं मुझे। एक और गज़ल है, देखिए शायद पसंद आए, मतलब पेश खिदमत के जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, हम उसकी बज्म में एक ऐसा किस्सा छोड़ आए हैं। जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, हम उसकी बज्म में एक ऐसा किस्सा छोड़ आए हैं। यही है फिक्र झेली होंगी कैसे बारिशें अबके, यही है फिक्र झेली होंगी कैसे बारिशें अबके, हम अपने घर की दीवारों को झुकता छोड़ आए हैं, हम अपने घर की दीवारों को झुकता छोड़ आए हैं। और ये शेर खास तौर पर समाज फरमा लें, चलो हम लौट तो जाएं मगर उनसे कहेंगे क्या, चलो हम लौट तो जाएं मगर उनसे कहेंगे क्या कि जिन आंखों में सुंदर घर का सपना छोड़ आए हैं। चलो हम लौट तो जाएं मगर उनसे कहेंगे क्या कि जिन आंखों में सुंदर घर का सपना छोड़ आए हैं। जो याद आता है अपनों से सवा परदेश में हमको, जो याद आता है अपनों से सवा परदेश में हमको, हम अपने देश में एक ऐसा रिश्ता छोड़ आए हैं। जो याद आता है अपनों से सवा परदेश में हमको, हम अपने देश में एक ऐसा रिश्ता छोड़ आए हैं। आखिरी शेर इस गजल का कि हमारी प्यास को क्या आजमाएंगे तेरे सागर, हमारी प्यास को क्या आजमाएंगे तेरे सागर, हम अपनी राह तकता एक दरिया छोड़ आए हैं। हमारी प्यास को क्या आजमाएंगे तेरे सागर, हम अपना राह तकता एक दरिया छोड़ आए हैं। जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, हम उसकी बज्म में एक ऐसा किस्सा छोड़ आए हैं। चंद शेर एक अलग से किस्म के खालिस गजल के शेर हैं, और समाज फरमा लें कि देखिए बिल्कुल खालिस गजल के, मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के सुजा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के सुजा ली आंखें। और ढूंढता कैसे उन आंखों में मोहब्बत की चमक, ढूंढता कैसे उन आंखों में मोहब्बत की चमक, मुझसे मिलते ही नजर उसने झुका ली आंखें, मुझसे मिलते ही नजर उसने झुका ली आंखें। और ये शेर देखें खास तौर पे कि ख्वाब आएंगे कहाँ ऐसे सुलगते घर में, ख्वाब आएंगे कहाँ ऐसे सुलगते घर में, रात भर जाग के क्यों तुमने जला ली आंखें। ख्वाब आएंगे कहाँ ऐसे सुलगते घर में, रात भर जाग के क्यों तुमने जला ली आंखें। वो जो कहता था कि जी लेगा बिछड़ कर मुझसे, शेर देखें कि वो जो कहता था कि जी लेगा बिछड़ कर मुझसे, उसने एक दिन में ही रो रो के सुजा ली आंखें, उसने एक दिन में ही रो रो के सुजा ली आंखें। और दूर जाकर बड़ा नाजुक से शेर है कि दूर जाकर भी न रोया तो वो मर जाएगा, दूर जाकर भी न रोया तो वो मर जाएगा, वक्त रुखसत तो है पत्थर की बना ली आंखें, दूर जाकर भी न रोया तो वो मर जाएगा, वक्त रुखसत तो है पत्थर की बना ली आंखें। और खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें। और आखिरी शेर इस गजल का कि जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, जाने

0: क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, उसने शर्मा के जो हाथों से छुपा ली आंखें। जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, उसने शर्मा के जो हाथों से छुपा ली आंखें। मक्ता समात फरमा लें कि हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, और कहीं मैंने भी दानिस्ता बचा ली आंखें। हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, और कहीं मैंने भी दानिस्ता बचा ली आंखें। मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के सुजा ली आंखें। दूर जाकर बिना रोया तो मर जाएगा, वक्त रुखसत तो हैं पत्थर की बना ली आंखें। और खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें। और आखिरी शेर इस गजल का कि जाने क्या।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं समाचार दर्शन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में देश भर में लागू हुआ वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 और प्रदेश में शुरू हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विशेष अभियान। इस माह की पहली तारीख से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवी जीराम जी अधिनियम 2025 लागू हो गया। इस अधिनियम ने मनरेगा का स्थान लिया है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जबकि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था। यह योजना पूरे देश के गाँव में लागू हो चुकी है। इस संबंध में प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
3: विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीवीजी रामजी अधिनियम 2025 पूरे ग्रामीण भारत में 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया। अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें भी 1 जुलाई से ही लागू हो गईं।
4: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
3: वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 जून को कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणाली पूरी तरह से तैयार है और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 जुलाई को तिरुपति में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के शुभारंभ से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
3: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रयागराज में अधिनियम के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम बनेगी।

0: विकसित भारत बनाए। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाए। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत की राष्ट्रीय के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत अच्छा योजना अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित राज्यसभा बने।
1: प्रदेश भर में पहली जुलाई से स्कूल चलो अभियान और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ हो गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 11 जुलाई से शुरू हो रहे रोग नियंत्रण संबंधी दस्तक अभियान का भी पहली जुलाई को ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ से उद्घाटन किया। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अभियानों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से 1 जुलाई को राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था।
3: हम लोगों ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रदेश में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया। परिणाम अच्छे आए क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी, शिक्षा के उन्नयन के लिए स्पष्ट नीति थी और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक बच्चे तक उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ी थी। मुझे याद है 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद में केवल 36% विद्यालय ही पूरी तरह संतृप्त माने जा रहे थे। टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, फर्नीचर नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थी, मिड डे मील के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। हम लोगों ने तब ऑपरेशन कायाकल्प चलाया था। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से, उद्यमियों से अपील की थी कि ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व्यापक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवा करके उनके संतृप्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए।
2: मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है, यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
2: प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्कूल चलो अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए और जन जागरूकता रैलियां भी निकाली गईं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 1 जुलाई को ही लखनऊ से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अम्बेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया। गोरखपुर में वहां के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अजय जैन और CMO डॉक्टर राजेश झा ने अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संचारी रोग उन्मूलन में योगदान देने की शपथ दिलाई गई।
4: हम अपने गांव, ब्लॉक, जनपद और देश को रोगमुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम शपथ लेते हैं कि व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे।
2: अभियान के उद्घाटन के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि जिले में 1 महीने तक सघन अभियान चलाया जाएगा।
5: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा। विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं, तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
2: गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि वहां विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान ही डेंगू मुक्त हॉस्टल अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के प्रमुख संस्थानों के छात्रावासों में

0: साफ सफाई के साथ ही लोगों को मच्छर रोधी बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
1: समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे, देश भर में लागू हुआ वीवी जी राम जी अधिनियम 2025 और प्रदेश में शुरू हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विशेष अभियान। इसी के साथ संपन्न होता समाचार दर्शन का अंक। संपादन प्रेमचंद्र गुप्ता और वाचन वेद प्रकाश पाठक।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार दर्शन, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने POJK के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा।

0: ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएगी। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय और घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। पालघर, रायगढ़ और नासिक तथा पुणे के घाटी क्षेत्रों के लिए मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता
3: ही
2: है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। टोलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अभिजीत।

0: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
2: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
4: बीटेक पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन शुरू हो गए हैं।
3: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
4: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार थे अभिजीत, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। आकाशवाणी गोरखपुर के सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अपना लोकप्रिय फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन का ही माध्यम नहीं होता, बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाला एक सेतु भी है, जो दूरियों को भी करीब ले आता है। आपकी भेजी हुई फरमाइशें और अपने प्रियजनों के लिए समर्पित ये संदेश इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना देते हैं। तो आइए आपकी पसंद और हमारे सुरों के साथ यादों की सुरीली महफिल की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की पहली फरमाइश भेजी है मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह ने। इन्होंने ये गीत अपने परिवार के सदस्यों पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अधीन, मंगलवेन शाह तथा राजेंद्र जी को समर्पित किया है। इनकी फिल्म है पतंग फिल्म से इन्होंने गीत की फरमाइश की है। स्वर है सी रामचंद्र और शमशाद बेगम के। आइए सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।
2: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

श्रोताओं, बहुत ही मनमोहक गीत था ये। उम्मीद है कि ये गीत हमारे श्रोताओं और सुदर्शनचार्य के परिवार को अवश्य ही पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश भेजी है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से शेफाली उपाध्याय, वैष्णोपाध्याय, वेदांत, कोमल, दीक्षा और अंजुमन के साथ गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुन ने भी। इन्होंने घर फिल्म का बेहद ही लोकप्रिय और सदाबहार गीत सुनने की इच्छा व्यक्त की है। इस मधुर गीत को अपनी सुमधुर आवाज़ों से सजाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और बोल हैं गुलजार के। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर घर फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, संगीत की मिठास मन को नई ऊर्जा से भर देती है और पुराने दिनों की यादें भी ताज़ा कर देती है। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत फरमाइश। ये फरमाइश आई है श्री जगन्नाथ धाम पुरी उड़ीसा से। हमारे नियमित श्रोता हैं प्रेम जी भाई भारती और उनके परिवार की ओर से। सबसे पहले वे आज 7 जुलाई को हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रेम भाई जी, अपने परिवार की ओर से सभी श्रोताओं को आगामी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए स्नेहिल निमंत्रण भी भेज रहे हैं। इसके साथ ही उनके परिवार में एक नन्ही सी सदस्य अपूर्वा के आगमन का शुभ समाचार भी मिला है। आकाशवाणी परिवार की ओर से नन्ही अपूर्वा को ढेरों आशीर्वाद, उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ सुखद जीवन की शुभकामनाएं। और अब सुनते हैं उनकी पसंद पर अनाड़ी फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपनी फरमाइशों गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। संगीत दिलों को जोड़ता है और आपकी फरमाइशें इस सफ़र को और भी ख़ास बना देती हैं। अगली फरमाइश आई है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर और रतनमाला ने फिल्म पतंग के गाने की।

श्रोताओं, और अब समय है अगली फरमाइश का। ये फरमाइश आई है अक्षय कॉलोनी गुंदूर रोड धूलिया महाराष्ट्र से। हमारे श्रोता मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता ने अपनी पसंद का एक सदाबहार गीत सुनने का अनुरोध किया है। इनकी पसंद की फिल्म है मधुमति, और जिस गीत की उन्होंने फरमाइश की है, ये गीत अपनी भावपूर्ण आवाज़ से अमर बनाया है मुकेश जी ने। आज भी ये गीत प्रकृति की सुंदरता और जीवन के मधुर एहसास को उतनी ही खूबसूरती से बयां करता है। तो आइए मनोहर मगर और उनके परिवार के पसंद पर सुनते हैं फिल्म मधुमति का ये सदाबहार गीत।

और अब श्रोताओं बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। हमारे नियमित श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने अपनी पसंद का एक बेहद ही मधुर और सदाबहार गीत सुनने का आग्रह किया है। इनकी पसंद है फिल्म ममता का ये गीत। इस गीत को अपनी सुमधुर आवाज़ से अमर बनाया है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। भावपूर्ण शब्दों और मधुर संगीत से सजा ये गीत आज भी श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। तो आइए दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की पसंद पर सुनते हैं ममता फिल्म का ये गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: आप सुन रहे हैं अपने फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। यादों के सुरीले खारवां को आगे बढ़ाते हैं और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश आई है रथ चौक बहादुरपुर खानदेश महाराष्ट्र से। हमारे श्रोता संतोष कुमार सोनार मुन्ना और बांडू दादा ने अपनी पसंद का एक बेहद ही लोकप्रिय सदाबहार गीत सुनने का अनुरोध किया।

0: इनकी पसंद की फिल्म है आशिकी। इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। प्रेम की भावनाओं को खूबसूरती से अभिव्यक्त करता ये गीत आज भी श्रोताओं की पहली पसंद बना हुआ है। तो आइए संतोष कुमार सोनार और उनके साथियों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आशिकी का ये सदाबहार गीत।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं,

श्रोताओं, उम्मीद है कि ये सुरीला गीत आपको पसंद आया होगा। आपकी फरमाइशें और स्नेह भरे संदेश ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी पहचान हैं। और आइए अब बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश आई है बागपत उत्तर प्रदेश से। हमारे श्रोता संजय ढिंगड़िया, नमन ढिंगड़िया और अपार ने अपनी पसंद का एक सदाबहार गीत सुनने का अनुरोध किया है। इनकी पसंद है फिल्म दो रास्ते का बेहद ही लोकप्रिय गीत। इस मधुर गीत को अपनी सुरीली आवाज़ों से सजाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। प्रेम और अपनेपन से सराबोर ये गीत आज भी श्रोताओं के दिलों में अपनी ख़ास जगह बनाए हुए है। आइए बागपत के हमारे श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दो रास्ते से ये नगमा।

समय की सीमा के कारण आज हम सभी फरमाइशें कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके। जिन श्रोताओं की पसंद आज प्रसारित नहीं हो पाई, उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि वे निराश ना हो, आपकी फरमाइशें सुरक्षित हैं और आने वाले कार्यक्रमों में उन्हें अवश्य ही शामिल किया जाएगा। आप अपना स्नेह, विश्वास और अपनापन इसी तरह बनाए रखिए और अपनी पसंद के गीत, संदेश हमें निरंतर भेजते रहिए। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: भगवान सिंह कुमार हैं, इनको डेडिकेट रहेगा। और पूनम है कानपुर से, ओमकार सीतापुर से, सुरभि सीता।
1: आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

0: भारत के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की

0: प्रगति की समीक्षा की गई। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
5: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
8: BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA D-Pharma B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
7: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
8: KIPM गीता गोरखपुर।
9: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लग

0: 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
1: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास
0: और भरोसा।
1: जानो फिर मानो।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको

0: पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: रामज्ञान यादव और साथी कलाकारों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम गीतांजलि में और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अपर्णा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं जब तक है जान फिल्म से ये गीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे जब तक है जान फिल्म से। इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ से सजाया है रब्बी शेरगिल ने। गीत के बोल हैं गुलजार के और संगीत दिया है AR रहमान ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए शुद्ध देसी रोमांस फिल्म से। इसे आवाज़ दी है मोहित चौहान और सुनिधि चौहान ने। बोल हैं जयदीप साहनी के और संगीत सचिन जिगर का।

0: ना कहना कि तेरे मेरे बीच में क्या है,
1: क्या है
2: तुम्हें पता तो है क्या है
0: कि तेरे

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीतांजलि। तो आइए सुनते हैं अब भाग मिल्खा भाग फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है सिद्धार्थ महादेवन ने, गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। तो लीजिए सुनिए ये जोश से भरपूर ये गीत।
5: Mm-hmm.

श्रोताओं, संगीत जीवन में नई ऊर्जा भर देता है और यह गीत उसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। अगला गीत है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, जिसे आवाज दिया है श्रेया घोषाल ने, उदित नारायण, विशाल ददलानी और शेखर रविजियानी ने। बोल हैं अन्विता दत्त के और संगीत है विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं ये मस्ती भरा गीत।

श्रोताओं, पेश है फिल्म घनचक्कर से ये गीत जिसे गाया है अमित त्रिवेदी ने। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत भी अमित त्रिवेदी का है।

घनचक्कर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि में आज का हमारा यह सुरीला सफ़र यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
3: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
3: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
3: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी।
3: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
3: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
2: जी।
3: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता
3: जी। तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की
2: जी।
3: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी
2: जी। सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
3: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है
2: जी।
3: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है
3: जी। हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल।
3: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी।
3: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं
2: जी। ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
3: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं
2: जी।
3: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
2: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा

0: में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी।
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी
2: श्रम का राग सुनाती चींटी
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा दाना चुनकर लाती चींटी सचमुच कैसी कलाकार है घर को खूब सजाती चींटी छोटा तन पर बड़े इरादे
2: छोटा तन पर बड़े इरादे
1: नहीं कभी घबराती चींटी
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी
2: काम बड़े करके दिखलाती
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी मेहनत ही पूजा है प्रभु की
2: हमको यही सिखाती चींटी
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces the...
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरिनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया, को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
7: आओ चलो आओ।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं। अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
2: अच्छा, काहिरा नहीं, अल काहिरा।
1: हाँ।
2: पापा पापा, वो देखो, नील नदी है।

0: हाँ वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा

0: नारियल अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, क्या कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ, बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्मचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।

0: यहाँ गीजा में तीन पिरामिड है, वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
1: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
0: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
1: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
0: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं।
0: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
1: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
0: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
0: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
1: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
1: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
3: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
1: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
3: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
1: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
3: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
3: हाँ तो आओ, चलो आओ, खादे आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं। स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे।

0: मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
1: पूछिए।
0: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
1: हर साल पानी चढ़ता है।
0: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
0: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
0: हार गए?
1: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
0: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
0: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है, पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है, साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता, बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता

0: का माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गाने सुहाने। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे सदाबहार गीत जिन्होंने अपनी मधुर धुन, भावपूर्ण बोल और बेहतरीन गायकी से श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। तो आइए इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म तीसरी मंजिल के इस गीत के साथ।

क्षमा करिएगा, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तुमसा नहीं देखा फिल्म के इस गीत के साथ।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म तुमसा नहीं देखा से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, संगीत ओपी नैयर का और बोल साहिल लुधियानवी के।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म अमर प्रेम से ये गीत, संगीत राहुल देव बर्मन का, बोल आनंद बख्शी के।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक,
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंच

0: जाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
0: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
3: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
4: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
3: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
4: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
3: गाने के बोल,
4: गीतकार
3: और संगीतकार
4: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
3: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
4: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
3: गाते गुनगुनाते
4: सुनिए सुबह 10:05 पर।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। और आइए अब सुनते हैं प्रेम बंधन फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का, गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: श्रोताओं, इन्हीं मधुर गीतों के साथ आज का गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। नींव से

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे अभिजीत। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ और विश्वनाथगंज असेंबली हलकों में 384 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 111 तरक्याती प्रोजेक्टों और सुल्तानपुर और इसौली असेंबली हलकों में 819 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 99 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज समेत कई अहम तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी किया और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में चेक्स, आयुष्मान कार्ड, सिलाई मशीनें, मकान की चाबियां, सर्टिफिकेट्स

नमस्कार, मैं हूं मेनका और आप सुन रहे हैं नारी जगत। ढेर सारी बातें और खूबसूरत गीतों के साथ आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, नारी जगत ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम महिलाओं को जानकारी, जागरूकता और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहनों देखिए, समय बदल रहा है और इसके साथ बदल रहा है हमारा जीवन। आज मोबाइल और इंटरनेट ने हमारे कई काम को बहुत आसान कर दिया है। घर बैठे बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और सरकारी सेवाओं का लाभ और जानकारी सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। लेकिन इन सब सुविधाओं का लाभ तभी सुरक्षित है जब हम डिजिटल दुनिया के प्रति जागरूक और सतर्क हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज हम बात करेंगे डिजिटल साक्षरता अभियान की, डिजिटल भुगतान की सुरक्षा की, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बचाव की और यूपीआई के सुरक्षित उपयोग की, जिससे आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे आपके पास। तो पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को लेकर के।

तो बहनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिजिटल साक्षरता की। बहनों देखिए आज का युग डिजिटल युग है, हर जगह डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है और ऐसे समय में डिजिटल साक्षरता केवल एक सुविधा नहीं है बल्कि एक आवश्यक जीवन कौशल बन गया है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ ये है कि खाली आपको स्मार्टफोन चलाना नहीं है बल्कि तकनीक का सही सुरक्षित और समझदारी से उपयोग करना है। बहनों ये जानना कि ऑनलाइन भुगतान कैसे किया जा सकता है, सरकारी सेवाओं का लाभ हम कैसे ले सकते हैं, ज़रूरी दस्तावेज़ को हम कैसे डाउनलोड करें और इंटरनेट पर सही और गलत जानकारी की पहचान हम कैसे करें, वास्तव में डिजिटल साक्षरता इसी को कहते हैं। और अब ये जानना ज़रूरी है कि ये डिजिटल साक्षरता आज के ज़माने में क्यों बहुत ज़रूरी है। बहनों देखिए आजकल लगभग हर काम डिजिटल माध्यम से होने लगा है, बैंक का काम हो वो भी डिजिटल, बच्चों की पढ़ाई हो, गैस की बुकिंग हो, बिजली पानी का बिल का भुगतान हो या फिर सरकारी योजनाओं की जानकारी। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है तो भी आपको डिजिटल ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप कोई व्यवसाय कर रही हैं तो उसका प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी है और ये भी आप डिजिटल माध्यम से कर सकती हैं। मैंने खासकर महिलाओं के लिए तो डिजिटल साक्षरता आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। आप स्वयं सहायता समूह से संपर्क करके अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री भी करा सकती हैं इसके माध्यम से। जब कोई महिला डिजिटल साक्षर होती है तो वो केवल खुद आगे नहीं बढ़ती बल्कि पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है। वो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में मदद कर सकती है, घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकती है, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं की तमाम जानकारी भी वो प्राप्त कर सकती है। इसलिए बहनों आज के समय में पढ़ना लिखना जानना ही काफ़ी नहीं है बल्कि आज के समय में डिजिटल साक्षर होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तकनीक तभी वरदान बनती है जब आप उसके साथ सही जानकारी और सावधानी भी बरतते हैं, क्योंकि अगर जानकारी ना हो तो ऑनलाइन फ्रॉड का आप शिकार हो सकती हैं, आपकी मेहनत की कमाई मिनटों में उड़ सकती है। पर वो कैसे आप सुरक्षित रह सकती हैं इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म गीत का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

बहनों, फिल्म गीत का ये खूबसूरत गीत आपने सुना और अब हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। बहनों देखिए, आज के दौर में मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई और ऑनलाइन भुगतान ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। घर बैठे पैसे भेजना हो, बिजली का बिल भरना हो या कुछ भी खरीदारी करनी हो, बस मिनटों का काम है। लेकिन जहाँ सुविधाएँ बढ़ी हैं, वहीं पर ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए

डिजिटल सुविधा के साथ साथ डिजिटल सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। बहनों, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड तब होता है जब कोई ठग किसी व्यक्ति से उसके बैंक खाते का नंबर जान लेता है या फिर एटीएम कार्ड का पिन जान ले, यूपीआई से जुड़ी तमाम सीक्रेट बातें उससे हासिल कर लेता है और उसके बैंक के खाते से पैसे निकाल लेता है। कई बार बैंक अधिकारी बन करके या फिर इनाम का लालच दे करके या कुछ नहीं तो केवाईसी अपडेट करने के लिए बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखा करके इस तरह की बातें करके वो आपसे आपकी सीक्रेट जानकारी हासिल कर लेता है। बहनों, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना ओटीपी, एटीएम का पिन और सीवीवी और पासवर्ड या यूपीआई पिन कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी बैंक का अधिकारी या कोई अधिकारी बन करके आपसे फ़ोन पर इस तरह की कोई जानकारी कभी नहीं मांगते हैं। इसके अलावा अगर फ़ोन पर अगर कोई अनजान लिंक आता है तो उस पर भी आप बिना जांचे उस लिंक पर क्लिक ना करें, और आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप भी हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। और अगर कोई व्यक्ति स्क्रीन शेयर करने वाला ऐप डाउनलोड करने के लिए कहे तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपके मोबाइल और बैंक की जानकारी खतरे में पड़ सकती है। और अक्सर कर बहनों देखते हैं कि ऑनलाइन जब हम पेमेंट करते हैं तो बस स्कैन किया या नंबर पूछा और नाम दे देते हैं या पैसा भेज देते हैं। यहाँ पर भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो नंबर और नाम ज़रूर चेक कर लें। अगर कुछ गड़बड़ी होती है लेन देन में तो आपको तुरंत बैंक से संपर्क करना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ने पर आप राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैंने समय पर अगर आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो पैसे बचने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आज के इस डिजिटल युग में जागरूकता ही आपका कवच है। बस इस कवच के साथ रहिए, फिर आप कभी भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार नहीं बन सकती हैं। और अब इन बात को यहाँ पर रोकते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत फिल्म आन मिलो सजना से।

और बहनों, अब हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं यूपीआई का सुरक्षित उपयोग। बहनों, देखिए, डिजिटल साक्षरता की बात तो हमने की, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग छोटे बड़े भुगतान सभी यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं। इसने दैनिक जीवन को हमारे बहुत आसान कर दिया है। कोई भी खरीदारी करनी हो, बिल जमा करना हो, या फिर रिश्तेदार को पैसे भेजने हो, कुछ सेकंड में ये काम हो जाता है। लेकिन जितनी ज़रूरी सुविधा है, उतना ही इसका सुरक्षित उपयोग जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले और ज़रूरी बात, आप हमेशा याद रखिए कि अपना यूपीआई पिन कभी किसी से साझा न करिए। और कहीं भी अगर पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने से पहले सामने वाले का नाम, यूपीआई आईडी ध्यान से एक दो बार ज़रूर जांच लीजिए। जल्दीबाजी में की गई एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत की कमाई को गलत खाते में पहुंचा सकती है। अभी आपको बताती हूँ मैं, मेरी जो मेड है, उसने ही ये गलती कर दी है। उसको कहीं पर 400 रुपये देना था किसी दुकानदार को, और उसने एक ज़ीरो की गलती कर दी और उसने दुकानदार को 4,000 रुपये पेमेंट कर दिए। खैर, दुकानदार बहुत अच्छा था, उसने नेक्स्ट डे उसे बुला करके उसे कैश वापस कर दिया। पर यहाँ पर उसकी गलती हुई कि उसने ध्यान से कितना पैसा देना है ये उसने ध्यान नहीं दिया। तो हमेशा जब भी आप किसी को पैसा भेजते हैं, तो आपको अमाउंट भी चेक करना है और नाम भी ज़रूर चेक करना है, जिससे कि वो आपका भेजा गया पैसा किसी गलत खाते में ना पहुँच पाए। इसके अलावा बहनों, हमेशा आपको भरोसेमंद और किसी आधिकारिक यूपीआई ऐप का ही यूज़ करना है। अपने फ़ोन को आप हमेशा पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक से सुरक्षित रखिए, और अगर फ़ोन गायब हो जाता है, तो तुरंत बैंक को सूचना दीजिए, सिम लॉक कराइए और पुलिस को सूचित करिए। अगर आप इन छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगी, तो आपकी मेहनत की कमाई आपके पास सुरक्षित रहेगी। और अब वक्त हो चला है एक और खूबसूरत

0: ये गीत था फिल्म प्रेम रोग से। और अब देखिए बहनों, बरसात का मौसम शुरू हो गया है और मई और जून की झुलसती गर्मी के बाद बारिश की फुहार बहुत खुशी लेकर के आती है। तपती धूप के बाद बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो मन खुशी से भर उठता है। खेत खलिहान हरे हो जाते हैं और पेड़ पौधे खिल उठते हैं और वातावरण में देखिए एक ताजगी सी आ जाती है। लेकिन ये मौसम जितना सुहाना होता है उतनी ही सावधानी की भी मांग करता है। बारिश में जगह जगह पानी भर जाता है जिससे कि मच्छर, मक्खी और बरसाती कीड़े पनपने लगते हैं। इस कारण इस मौसम में मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, हैजा और वायरल जैसी बीमारी बढ़ जाती है। और इन सबसे बचने का बहनों सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें। हमें अपने घर और अपने आसपास किसी भी तरह पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। हमें अगर घर में कूलर है, गमले हैं, पुराने टायर हैं, उसमें देखिए पानी जमा हो जाता है, तो वो पानी हमें हमेशा निकाल देना चाहिए। उस जगह की हमें नियमित सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा मच्छर से बचने के लिए हमें मच्छरदानी और फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए। इसके साथ साथ बहनों देखिए, हमें खान पान का भी बहुत ध्यान रखना होता है बरसात के मौसम में। अक्सर कर देखिए, अगर हम बासी खाना खा लेते हैं या कहीं का बाहर का खुला खाना खा लेते हैं तो हमें तकलीफ हो जाती है। इसलिए हमेशा आपको इस मौसम में ताज़ा गर्म खाना और घर का बना हुआ खाना आपको खाना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, जब आप बाहर के कटे हुए जब आप फल खाते हैं उसको खाने से आपको बचना चाहिए। घर पे में जो भी फल और सब्जियां आती हैं आप उन्हें यूज़ करने से पहले बहुत अच्छे से नमक के पानी से आपको उन्हें धोना है। और खाना पकाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप पका रहे हैं वो बहुत अच्छे से पके, अधपकी न रह जाए। और अगर घर में किसी को तेज़ बुखार आता है और लगातार उल्टी और दस्त आता है, शरीर में कमज़ोरी बनी रहती है, तो घरेलू चीज़ों के साथ साथ आपको डॉक्टर के पास भी जाना होगा। क्योंकि देखिए, इस समय अगर आप ज़रा भी लापरवाही करती हैं तो आपकी लापरवाही इस बीमारी को बड़ा रूप दे सकती है। हमें अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए। और कहते हैं ना कि मौसम हमेशा आना जाना होता है, और अगर हम इस मौसम का के हिसाब से अपना खान पान रखेंगे, अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करेंगे तो हमें कभी भी मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। जब जैसा मौसम है हमें उसी हिसाब से अपना रहन सहन करना है, अपना खान पान रख करना है। अगर हम अपनी हेल्थ के प्रति पूरी जिम्मेदारी लें, अपनी लें, अपने परिवार की लें, अपने बच्चों की देखभाल करें तो हम बरसात का आनंद बहुत अच्छे से ले सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहनों, चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जागरूकता ही आज के समय में सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए तकनीक का लाभ उठाइए पूरी सावधानी और समझदारी के साथ। और अब नारी जगत कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से होगी मुलाकात नए विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मेनका श्रीवास्तव से महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: भंवरे खिल रही है कली कली।
3: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
4: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
3: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
4: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
3: गाने के बोल,
4: गीतकार
3: और संगीतकार,
4: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
3: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
4: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
3: गाते गाते

0: प्लस की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
0: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है समेकित खेती। वार्ताकार हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह।
5: अन्न के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु एक तरफ औद्योगिकीकरण, शहरीकरण एवं लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि के क्षेत्रफल में लगातार कमी होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण हेतु खाद्यान्न उत्पादन की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस मांग की पूर्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हमारे किसान भाई एक ऐसी कृषि प्रणाली अपनाएं जिसमें कम लागत पर अधिक उत्पादन हो, आमदनी साल भर होती रहे, ताकि बच्चों की पढ़ाई, शादी, स्वास्थ्य एवं सामाजिक रस्मों पर होने वाले खर्च को आसानी से कर सकें। इन सारी समस्याओं के निदान हेतु किसान भाइयों को समेकित कृषि प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। समेकित कृषि प्रणाली खेती की एक ऐसी विधि है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ अन्य विभिन्न उद्यम जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम पालन, मशरूम उत्पादन, कृषि वानिकी, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, कंपोस्ट उत्पादन, बायोगैस इत्यादि को जब एक दूसरे के साथ इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वे एक दूसरे के पूरक

हों, जैसे पशुओं के प्राप्त गोबर को कंपोस्ट बायोगैस बनाने में किया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए उत्पादन लागत में कमी लाने में समेकित कृषि प्रणाली बहुत ही सहायक है। किसान भाइयों, समेकित खेती के उद्देश्य छोटे किसानों के लिए लाभदायक एवं अनुकूल समेकित कृषि मॉडल का विकास करना है, किसानों में सहभागिता का भाव जागृत करना, मृदा सुधार के साथ साथ जल की उर्वरता एवं भूमि की उर्वरता तथा ऊर्जा के प्रयोग की दक्षता को लगातार बढ़ाना है, प्रति इकाई उत्पादन के लागत को कम करना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और शोध के कार्यक्रमों को लगातार बढ़ावा देना है। समेकित खेती में होने वाली जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, समेकित प्रणाली एक दूसरे के घटक की आवश्यकता को पूरा करते रहते हैं, जिससे बहुत ही कम लागत में पूरे वर्ष भर उत्पादकता बढ़ती रहती है, सकल उत्पादन में वृद्धि होती है तथा लागत मूल्य कम हो जाता है, बाजार पर निर्भरता कम हो जाती है। पारंपरिक खेती की अपेक्षा वर्ष भर निरंतर रूप से आय होती रहती है। समेकित कृषि प्रणाली में विभिन्न घटकों के विवरण के बारे में, पशुपालन, इस घटक में किसान अपनी आय के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। गाय भैंस के अलावा बकरी, भेड़ इत्यादि का भी पालन आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। इस घटक से उत्पन्न गोबर मूत्र मत्स्य पालन में बहुत ही सहायता करते हैं तथा मत्स्य पालन की लागत को कम करते हैं। गोबर का प्रयोग कंपोस्ट खाद एवं बायोगैस में भी करते हैं। मत्स्य पालन यह घटक समेकित कृषि प्रणाली का मुख्य घटक है। इसके लिए एक तालाब की आवश्यकता होती है और किसान भाई ये ध्यान देना चाहिए कि जो तालाब हो बहुत छोटा ना हो। सामान्यतः जो भूमि कम उपजाऊ हो उसका उपयोग तालाब बनाने में करना चाहिए। तालाब को चूने से उपचारित करवाने के बाद उसमें पानी भर दें। तालाब में किसान भाई तीन प्रकार की मछलियाँ पाल सकते हैं, पहली जो सतह पर रहती हैं, दूसरी जो मध्य जल में एवं तीसरी जो गहरे जल में रहती हैं। समेकित कृषि प्रणाली में मछली पालन लगभग कुल भूभाग का 10% क्षेत्रफल तालाब में उपयोग में लाया जा सकता है। मुर्गी पालन यह घटक वर्ष भर आमदनी का मुख्य स्रोत है। किसान भाई मुर्गी, बत्तख, बटेर इत्यादि का पालन कर सकते हैं। यह घटक मत्स्य पालन में बहुत ही सहयोगी भूमिका निभाता है तथा मत्स्य घटक की लागत को 25-40% तक कम कर देता है। फसल मौसम आधारित फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि जिससे अनाज प्राप्त होते हैं, लगभग 10% से 40% क्षेत्रफल में धान, गेहूं, मक्का, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, अरहर, सरसों, मकचरी इत्यादि फसल प्रणाली में लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है एवं पशुपालन की लागत को भी यह कम कर देता है। चारा उत्पादन समेकित खेती मॉडल में यह सम्मिलित बड़े पशुओं को वर्ष भर हरे चारे की पूर्ति करने के लिए लगभग 20% क्षेत्रफल में बरसीम, जई, मक्का, बाजरा, चरी इत्यादि उगा सकते हैं, जिससे वर्ष भर बड़े पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनी रहती है। साग सब्जियां एवं बागवानी, इसके अंतर्गत सब्जियां, फल एवं फूलों की खेती की जा सकती है, जैसे टमाटर, बैंगन, परवल, मिर्च, अदरक, घिया, खीरा, भिंडी इत्यादि की बुआई कर सकते हैं। बाजार में सब्जियों की कीमत को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित समय पर लगाया जाता है। फलों की बात की जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण केला एवं अमरूद है। इन फलों के अलावा कोई भी फल तथा औषधीय पौधों को भी किसान भाई चयनित कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन, मौन पालन जमीन के एक छोटे भूभाग पर सामान्यतः एक कोने में भी किया जा सकता है। मशरूम उत्पादन यह बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। अगर हम इसमें समेकित खेती में शामिल करें तो प्रबंधन पर आने वाली लागत को 50% तक कम किया जा सकता है, जिससे 2 गुने से लेकर 3 गुने तक अधिक लाभ कमाया जा सकता है। कंपोस्ट खाद का उत्पादन, किसान भाई गाय भैंस के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर पशुपालन के घटक को और भी लाभकारी बना सकते हैं। छोटे छोटे कंपोस्ट यूनिट बनाकर उनमें केचुए की मदद से लाभकारी खाद बनाकर जिसका हम प्रयोग जैविक खेती में भी कर सकते हैं और या इसे महंगे दामों में बेचा जा

0: जा सकता है। सौर ऊर्जा उत्पादन खाली पड़े स्थान तथा पशु बाड़ों कुक्कुट इकाई के ऊपर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाकर बिजली के खर्च को बचा सकते हैं और अतिरिक्त बिजली होने पर इसे आसपास के घरों में बेचा जा सकता है जिससे आमदनी हो सकती है। समेकित खेती में एक बार में किसान भाई सारा निवेश न करें, इसे अपनाने के लिए चरणबद्ध तरीके अपनाएं। सभी पशुओं की खरीदारी एक साथ न करें, तालाब का रोज निरीक्षण करें और समय समय पर तालाब की सफाई भी करवाते रहें। चारे की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए मौसम के अनुसार चारे की फसल लगाएं। साग सब्जियां एवं फलदार पेड़ों का समय समय पर बदलते रहें। पशुओं के घर की साफ सफाई करते रहें। पशु चिकित्सक एवं कृषि विशेषज्ञ का समय समय पर सलाह लेते रहें। बाजार मूल्य के हिसाब से अपनी लागत का समय समय पर आकलन भी करते रहें। समेकित खेती आज के आधुनिक कृषि एवं पशुपालन की मांग है। बदलते परिवेश में लोगों को यह ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंधन एवं चरणबद्ध तरीके की समेकित खेती की जाए तो यह निश्चित ही बहुत ही लाभकारी है। मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, रेशम पालन, बागवानी, गोबर गैस उत्पादन, अपशिष्ट निस्तारण इत्यादि को एक साथ उचित अनुपात में शामिल करते हुए समेकित खेती को आधुनिक रूप दिया जा सकता है और अधिक से अधिक धनोत्पादन किया जा सकता है।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता। विषय था समेकित खेती। वार्ताकार थे डॉक्टर कुलदीप सिंह। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस।
6: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding, MOUs, aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security, and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation, and industrial collaboration. The two leaders also reaffirmed their commitment to strengthening the Indonesia Comprehensive Strategic Partnership. During talks in Jakarta, the two leaders witnessed the signing of several MOUs covering defense, critical minerals, agriculture, steel, maritime cooperation, and emerging technologies. They agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. The two sides also agreed to strengthen collaboration in manufacturing, food security, and digital technology.
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
0: Mr. Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. He dedicated the award to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture, and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
1: Hum development, security, technology, culture, aur education har kshetr mein mahatvapurna kadam badha rahe hain. Mujhe vishwas hai आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Mr. Modi said both sides have reached an important understanding to strengthen supply chain resilience in critical minerals and steel. He added that companies from the two countries are beginning new partnerships in stainless steel and rare earth magnets. The Prime Minister said India's Unified Payments Interface, UPI, will soon be integrated with Indonesia's payment system, promoting both ease of doing business and ease of travel.
1: People-to-people ties हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: Earlier, Prime Minister Modi received a ceremonial welcome at the Istana Merdeka, the presidential palace. Defense Minister Rajnath Singh also congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. In a social media post, Mr. Singh said this exceptional honor is a resounding

0: प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया

0: साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास, ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज टीआरआई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन

0: कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रस्तुत थियो समूह स्वरमा यो देशभक्ति गीत। यो प्रसारण हो आकाशवाणी खरसाङको र प्रस्तुत छ कार्यक्रम खरसंसार। तर यसअघि सुनौ यो छोटो।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। संपन्न होती है हमारी ये प्रसारण सभा। एफएम बैंड पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ सायं 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आए हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
0: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें? शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई? आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
1: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।

0: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा
0: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है,
1: जी
0: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं। और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं।
1: जी जी
0: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए हैं, और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया। और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा
0: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा।
1: जी
0: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा
0: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस
1: जी
0: तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में, या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं, या एफटीआई में जाऊं,
1: जी
0: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के
1: बाकी शहरों
0: मुकाबले
1: में जी
0: इस क्षेत्र के लिए
1: जी जी
0: स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं
1: बिल्कुल
0: जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है।
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो,
1: जी
0: ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है,
1: हाँ
0: आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो। बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, तो आदमी फंस
1: हाँ
0: जाता है, तो उसमें
1: हाँ
0: फंस सा गया था।
1: अच्छा
0: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा। तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया।
1: जी
0: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा
0: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है,
1: जी
0: तब मैं 20 साल का था। लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के
1: हाँ
0: बारे में मालूमात नहीं थी। तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, आई कंप्लीट माई एमबीए।
1: अच्छा
0: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया। फिर मैं कैसे तो भी करके, मतलब मिन्नतें करके, मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं। वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच। मैं यहाँ पे हाइपर सिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा
0: सो 2 2.5 साल लग गए। उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने
1: मतलब
0: ऑडिशन
1: पहली
0: दिया
1: बार आए तो एक नौकरी के लिए आए।
0: नौकरी के लिए।
1: अच्छा
0: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी।
1: जी
0: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया, जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला।
1: जी ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहां शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
0: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या
1: जी
0: स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
1: हाँ हाँ
0: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था,
1: जी
0: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहां पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहां पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है।
1: हाँ
0: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
1: हाँ
0: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे
1: एक
0: थे।
1: उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं,
0: जी
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
0: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूं, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
1: क्या
0: हूं,
1: बात है, क्या
0: तो आई नेवर इमेजिन एनी अदर
1: बात
0: प्रोफेशन।
1: वाह
0: बट
1: वाह
0: जरिया नहीं मिल रहा था, तो नाटक
1: वाह
0: हम करते रहते थे। 5th स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था,
1: हाँ
0: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है
1: हाँ हाँ
0: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
1: जी
0: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
1: जी
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है।

0: बहुत ज्यादा।
1: ये
0: मैं
1: कितने तने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा एमबीए जब मेरा पास आउट हो गया,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो। तो मैं
1: अच्छा
0: चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
1: हाँ
0: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया, क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था
1: जी
0: कि
1: जी
0: यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन करना पड़ रहा है।
1: ओह
0: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है, हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
1: हाँ
0: तो जिंदगी को एक लाइट ली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ
0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह,
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: ये
1: गाना,
0: एक बहुत खूबसूरत सा गाना है।
1: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत?

0: सर मैं जब नागपुर में था 2 साल
1: हाँ
0: के लिए,
1: हाँ
0: मैंने जॉब छोड़ के मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
1: हाँ हाँ
0: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
1: हाँ
0: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
1: जी
0: से।
1: जी
0: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी और रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस, तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाती काम कैसे मिलेगा।
1: अच्छा
0: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
1: जी
0: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं। सेम
1: हाँ
0: थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
1: अच्छा
0: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
1: जी
0: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था,
1: हाँ
0: तो वो सब करते करते। बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं थोड़ा
1: अच्छा
0: फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
1: जी जी
0: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
1: अच्छा
0: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
1: अच्छा
0: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया
1: जी
0: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
1: जी
0: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
1: जी जी
0: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, तो
1: सहज और स्वाभाविक
0: सहज और स्वाभाविक
1: अभिनय जिसे
0: अभिनय
1: कहा
0: जिसको
1: जाता है।
0: कहते हैं,
1: जी
0: तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
1: जी
0: थिंग। तो
1: जी
0: ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
1: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
0: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
1: जी।
0: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
1: जी
0: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
1: हाँ
0: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है इसलिए वो साथ में काम करता है,
1: जी
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
1: जी
0: वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूं, मैं मराठी कर सकता हूं,
1: जी
0: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
1: जी
0: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊं, बट
1: हाँ
0: हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूं रेगुलर, सो
1: अच्छा
0: दैट इज थिंग।
1: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ,
1: जी
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
1: ओहो
0: गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये
1: हाँ
0: मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे मगर एक ही तरह की वो उस टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी
1: हाँ
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी,
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी।
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो वही वाकया जो है कि पहली
1: जी,
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने में जा रहा था कि बच्चा साहब के जमाने मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय, कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी।
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ
1: डिपेंड है।
0: यस
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं, पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफी दिन। फिर हमें नहीं बोलना पड़ा, बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस
0: हाँ
1: हिसाब से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहां पे लोग आके उस पर धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे ही एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार दो बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज, तो वो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
0: अच्छा
1: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
0: अच्छा
1: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था,
0: जी
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते
0: हाँ,
1: होंगे।
0: बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था, इसमें सारे बड़े नाम,
1: बहुत
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: हूं। बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है,
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
0: जी
1: तो सामने

0: मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ, पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया। तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
1: जी,
0: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ, वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
1: हाँ,
0: हमारा शो और उनका शो केबीसी, और वो हम
1: जी,
0: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
1: हाँ
0: करने का।
1: हाँ
0: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा,
1: जी
0: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है। जैसे,
1: अच्छा
0: अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, ले एक मिनट बात करनी है।
1: हाँ
0: तो वो आए, बटन साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से, वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
1: हाँ
0: अरे क्या हो गया?
1: अच्छा
0: मैंने सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
1: हाँ
0: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। ही लाफ द सेम वे द वे यू लाफ।
1: अच्छा।
0: मैंने बोला मुझसे होता नहीं है।
1: हाँ। यहां अगर मैं आपसे कहूं कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे? हाँ
0: बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है, और जो मैं गाता भी हूं बहुत सारे गेट टुगेदर्स में,
1: हाँ
0: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे,
1: ओहो
0: आई लव दैट सॉन्ग। इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं
1: क्या
0: हमेशा
1: बात, चलिए सुनते हैं।

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार। और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो। मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने

0: महान एक्टर्स भी
1: जी
0: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एक ही वर्ष से एक ही मेरी दूसरी फिल्म थी,
1: जी
0: फिर मैंने बागी 3 भी की जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी,
1: हाँ
0: रितेश देशमुख
1: हाँ
0: साहब थे वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मड़गांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी,
1: जी
0: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, सो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ कितनी भी बार देखो, वैसा ही मड़गांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक वो
1: हाँ
0: एक फिल्म थी। और एक ताज़ा खबर नाम के वेब
1: वेब
0: सीरीज
1: सीरीज
0: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
1: जी
0: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जेडी चक्रवर्ती साहब,
1: जी
0: जो कि साउथ से, सत्या मूवी आई थी उन्होंने, उस सत्या का कैरेक्टर
1: हाँ
0: किया।
1: हाँ
0: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
1: जी
0: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शर्ट था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
1: हाँ
0: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था,
1: अच्छा
0: रंजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
1: हाँ हाँ
0: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में।
1: जी जी
0: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखव की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ, लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
1: हाँ
0: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
1: जी
0: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
1: अच्छा
0: तब हमारे रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है, मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी, मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई
1: अच्छा
0: बातें हुई, मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जू चलो,
1: अच्छा
0: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे, तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
1: हाँ
0: मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
1: हाँ
0: अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा
0: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प,
1: ओहो
0: इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत, मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई, उनके साथ ऊपर गया।
1: हाँ
0: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे। उन्होंने
1: अच्छा
0: कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट, टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया, और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे,
1: अच्छा
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे, और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
1: हाँ
0: कि डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था,
1: जी
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे, रंजीत सर ने बताया ये मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
1: हाँ
0: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है।
1: बराबर
0: देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई
1: अच्छा
0: वर्क विद हिम, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम ऑल्सो।
1: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग-अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
0: जी
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है,
1: हाँ
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है।
1: जी
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है
1: हाँ
0: आगे, और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
0: डेडलाइन
1: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है।
0: होना ही है,
1: जी
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख है तो उस वक्त आपको पहुंचाना है, और आपके पास में बहुत सारा काम होता है,
1: जी जी
0: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
1: जी
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक, वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर,

0: आतिश कपाड़िया सर, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का, तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात है
0: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौसी, भारती आचरेकर,
1: जी
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे वो
1: जी
0: अगले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं,
1: बिल्कुल
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था,
1: अच्छा
0: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा ही अपने आप में मुझे
1: ये मुझे
0: पसंद।
1: लगता है 2022 की बात है।
0: जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
1: हाँ
0: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है, वो
1: हाँ
0: शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा,
1: अच्छा
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने
1: बिल्कुल
0: वाले। तो
1: बिल्कुल
0: कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
1: जी
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल
0: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो और
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो। सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहे
1: जी
0: हो
1: जी
0: वहां पे लाइन में खड़ा होना
1: वो
0: पड़ता था।
1: दर दर भटकने वाली बात है वो
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहां कुछ काम नहीं है।
1: हाँ
0: कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो नहीं सर पता करने आया, कुछ काम है क्या? नहीं, कोई कोई काम नहीं है।
1: ओह
0: तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था, वो
1: हाँ
0: सफर है।
1: अच्छा
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब फिर।
1: बराबर
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ है।
1: हाँ
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा, बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात है। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो।
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया हुआ गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: है, क्या
0: गया
1: बात है।
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता
1: हम दोनों
0: चला।
1: फिल्म का गाना है,
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत
0: बेहद
1: है।
0: लोकप्रिय।
1: आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे,
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे,
1: तो
0: सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमिता ये करते हैं, सुमिता ये करेंगे, हाँ ये
0: हाँ
1: करेंगे। जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता
0: जी,
1: था क्योंकि
0: आपने
1: मैंने
0: बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उनका।
1: वागले मेरा, मनोज वागले मेरा नाम था।
0: जी,
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे
0: हाँ
1: बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ। सभी हम लोग सभी
0: जी
1: से
0: जी
1: सीनियर
0: जी
1: हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहां से आवाज आती थी, अरे
0: हाँ
1: दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद,
0: बिल्कुल,
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और
0: हाँ
1: उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
0: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने।
1: अमेजिंग इट वाज, मतलब
0: हाँ
1: पहला शॉट सुमिता के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमिता के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
0: अच्छा,
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा,
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है
0: अच्छा,
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है
0: ओके,
1: मेरा, जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ,
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है, जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं, इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं है तो
0: बहुत
1: कुछ ही
0: बड़े
1: नहीं।
0: कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं
1: जी,
0: और बहुत विनम्र होते हैं।
1: बहुत विनम्र होते हैं, इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो किस पे चला रहे हैं कुछ
0: जी
1: करके।
0: जी जी
1: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित दा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता,
0: जी
1: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
0: जी
1: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
0: अच्छा,
1: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर से तू आया कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, या ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो
0: जी
1: जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरा और उनका सीन है वो मुझे उनके रूम में बुला देते थे
0: अच्छा,
1: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी

0: प्रयास करना पड़ता
1: प्रयास करना पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए।
0: हाँ
1: लेवल पे पहुंचने की बात ही नहीं करता, शी इज सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली,
0: जी
1: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर।
0: हाँ
1: मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है,
0: हाँ
1: इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ,
0: जी
1: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा। तो
0: हाँ
1: आई यूज टू हैव इट फॉर एन आवर टू आवर, मैं लिखता था, खुद मैं लिखता हूं जितने भी लाइंस आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज टू राइट इन माई वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना
0: जी
1: पाटेकर
0: जी
1: साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
0: जी जी
1: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है,
0: जी
1: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है।
0: जी
1: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक, दीपक
0: जी
1: पारिक, और
0: जी
1: उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था, एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा।
0: जी
1: वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया,
0: जी
1: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
0: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूं
1: जी
0: कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
1: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं।
0: हाँ
1: कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
0: अच्छा
1: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया, ये हमारा दोस्त है, तो लोग यकीन नहीं करते थे
0: हाँ
1: कि ये तेरा रोज कहां से आएगा। जो नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है।
0: हाँ
1: बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
0: अच्छा
1: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ,
0: हाँ
1: हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे, वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा
0: अच्छा
1: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है,
0: अच्छा
1: दिखता बिल्कुल आपकी तरह। मैंने अच्छा,
0: अच्छा
1: मैं बोला किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है वागले की दुनिया,
0: हाँ
1: उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है,
0: अच्छा
1: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। मैंने अच्छा,
0: जी
1: मैंने बोला सर काम अच्छा करता है क्या?
0: हाँ
1: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
0: अच्छा
1: बोला चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई
0: क्या
1: लाइक
0: बात
1: दैट, आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में,
0: हाँ
1: उनको बताया कि ये वही है, बट उन्होंने बिलीव नहीं किया।
0: जी
1: कि आप क्या करोगे
0: जी जी
1: आप?
0: ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
1: जी
0: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते
1: मीन
0: हैं।
1: ट्रू ट्रू,
0: जी, तो
1: बिल्कुल
0: ऐसा ही वाकया आपके साथ हुआ
1: बिल्कुल
0: क्या?
1: ऐसा ही हुआ,
0: हाँ
1: और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है,
0: हाँ
1: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात
0: और क्या
1: है, और
0: चाहिए,
1: क्या चाहिए।
0: क्या बात है।
1: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छा लगा,
0: हाँ
1: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा, और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार
0: क्या
1: है।
0: बात
1: मैंने
0: है।
1: एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए
0: हाँ
1: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी रामजी लंदन वाले, ये
0: अच्छा हाँ
1: बहुत खूबसूरत फिल्म है, उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
0: अच्छा
1: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं
0: अच्छा
1: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं,
0: ओहो
1: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पर सब दिया जाता है,
0: हाँ
1: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे आप मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा
0: हाँ
1: है, गाड़ी रहेंगी आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं, मैं
0: हाँ
1: अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ, तो
0: हाँ
1: मजा तो वही है।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे, दैट
0: क्या बात है।
1: इज मोर इंपॉर्टेंट।
0: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था है अपना दिल तो आवारा।
0: हो आइए।

अभिनेता विपुल देशपांडे से, जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे,

नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स एवं 100.1 FM पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे को हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ते साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई हुए हैं। उन्हें 98% गारंटियां प्रदान की गई हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादन मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता है। कृषि और

राष्ट्रीयकृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम की व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जन स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई। श्री नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को लागू करने में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और केरलम के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। केरलम के वायनाड जिले के कलाडी में आज वायनाड सुरंग सड़क परियोजना के निर्माण स्थल पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं जबकि 7 अन्य लापता हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस तथा अग्निशमन एवं बचाव सेवा टीमें तैनात की गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपका दोस्त शिवांश लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाड़ी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हमेशा की तरह अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं। दोस्तों, विकास का सही अर्थ तभी है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। अर्थात दोस्तों, केवल बड़े शहरों, संपन्न लोगों या कुछ विशेष वर्गों का विकास ही पर्याप्त नहीं होता है। वास्तविक विकास वह है जिसमें समाज के गरीब, कमज़ोर, वंचित और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं का समान लाभ मिले। तो आप, अगर आप एक युवा हैं तो आप भी इस कार्य में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य है। दोस्तों, ये तो था सुविचार, सुविचार की कुछ बातें हुई। चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर, और आज हम लोग बात करेंगे अतुलनीय भारत से संबंधित एक बहुत ही सुंदर सा राज्य के बारे में, एक प्रदेश के बारे में। दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर पूरे विश्व को आकर्षित करती है। इसकी श्रृंखला में आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा में ले चल रहे हैं जिससे प्रकृति ने अपना अनुपम सुंदरता दिया है, सौंपा है। दोस्तों, सही पकड़ रहे हैं आप, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है, जिसमें से केवल कुछ ही द्वीप आबाद हैं। चारों ओर फैला नीला समुद्र, घने घने वन, अच्छी समुद्रीय तट और रंग बिरंगी प्रवाल जो भीतियाँ हैं, इसे प्राकृतिक प्रेमियों और पर्यटकों के लिए स्वर्ग जैसा बना देती हैं। तो अगर आप भी इन छुट्टियों में आने वाली छुट्टियों, ठंडी की छुट्टी आने वाली, इसमें जाना चाहते हैं आप, तो ज़रूर जाएगा ऐसे जगह। दोस्तों, यहाँ का जो राजधानी है उसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, यह स्थित है जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर प्रतीक भी रहा है। इस जेल में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए असहनीय यातनाएं सही थीं। आज यह स्थान हर भारतीय

में देशभक्ति की भावना जागृत कर देता है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि अपनी जैव विविधता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियाँ मिलती हैं, अनेक प्रकार के समुद्री जीव हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं और विशाल मैंग्रोव वन पाया जाता है। यहाँ का समुद्री जीवन विश्व भर के गोताखोरों और प्राकृतिक प्रेमियों को आकर्षित करता है। स्कूबा डाइविंग, स्कॉर्नलिंग और समुद्री पर्यटन यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ का प्रसिद्ध समुद्र तटों का विशेष स्थान है। अपनी सफ़ेद रेत, स्वच्छ जल और मनमोहक सूर्यास्त के कारण यह विश्व के सुंदर तटों में गिना जाता है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार की सांस्कृतिक विविधता भी अद्भुत है। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से आए लोग बहुत ही प्रेम से रहते हैं एक दूसरे के साथ। साथ ही साथ कुछ आदिवासी समुदाय आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखे हुए हैं, जो इस क्षेत्र की विशिष्टता और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये तो थी अंडमान और निकोबार विषय केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ बातें। आईनी बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

इस अंतराल के बाद आइए पुनः चलते हैं बातचीत की दुनिया में। और दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार को याद कर रहे हैं जिसका साहित्यिक योगदान सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, भाषाविद एवं विद्वान पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, जिनकी जयंती प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 7 जुलाई को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ था। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के गुलेर क्षेत्र से थे, इसीलिए उनके नाम के साथ गुलेरी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी तथा अन्य बहुत सारे ऐसे विषय थे जिस पर उनका अद्भुत अधिकार था। वे केवल साहित्य का ही नहीं बल्कि इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के गंभीर अध्येता भी थे। जब हिंदी कहानी साहित्य की चर्चा होती है तब उनकी अमर कहानी उसने कहा था, इसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी केवल प्रेम की कहानी नहीं थी बल्कि वचन निभाने की कहानी थी, कर्तव्य त्याग और मानवीय संवेदनाओं की अनुपम मिसाल थी। आज भी यह कहानी विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में पढ़ाई जाती है तथा हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में अपना विशिष्ट स्थान भी रखती है। दोस्तों, यह रचना हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का ही नहीं होता है बल्कि निभाने और त्याग करने का भी नाम है। दोस्तों, पंडित गुलेरी का मानना था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और उसका मार्गदर्शन भी होता है। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। वे अपने लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति के साथ साथ नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को सशक्त स्वर देते थे। उन्होंने अपना अल्प जीवन में ही साहित्य विरासत ऐसी छोड़ी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। आज का समय हम सभी जानते हैं कि तकनीक है और तेजी से बदलती जीवन शैली का है। ऐसे समय में भी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने और अपनी भाषा तथा संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। विशेष रूप से दोस्तों, युवाओं को उनकी रचनाओं का अध्ययन अवश्य करना चाहिए क्योंकि उनमें जीवन के गहरे मूल्य सरल शब्दों में प्रस्तुत किए गए हैं। पंडित गुलेरी जी की जयंती केवल एक साहित्यकार को याद करने का अवसर नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी दिन है। तो चलिए, इस अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे, अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे और अपने जीवन में सत्य, कर्तव्य, संवेदनशीलता तथा मानवता जैसे आदर्शों को अपनाएंगे। आज पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। आइनी बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

0: KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: दोस्तों, इस अंतराल के बाद आइए पुनः चलते हैं बातचीत की तरफ, और चलते चलते मैं आपको बता दूं कुछ रोजगार समाचार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड में भर्तियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें टेक्नीशियन भर्तियां आई हैं, उसमें कुल 6,557 पद आए हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026 तक। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोफेशनरी ऑफिसर यानी PO की भी भर्ती आई है, जिसमें कुल 1500 पद हैं। इसके लिए अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026 तक। इसी के साथ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया इसमें क्रेडिट ऑफिसर्स की भर्ती आई है, जिसमें कुल 779 पद निकाले गए हैं। इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 20 जुलाई तक। इसी के साथ दोस्तों, भारतीय नौसेना में SSC ऑफिसर पद की भर्ती निकली है, जिसमें कुल 275 पद निकाले गए हैं। इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026 तक। साथ ही साथ सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी कुछ पद निकाले गए हैं, जिसमें कुल 148 पद हैं। इन पदों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रही है। आवेदन प्रारंभ हो रहा है 9

से और इसकी अंतिम तिथि विस्तृत विज्ञापन के अनुसार घोषित की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड एसोसिएशन भर्ती में भी कुल 100 पद के लिए वैकेंसी आई है। इसके लिए भी आप कर सकते हैं आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2026 तक। साथ ही साथ दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पद प्रोजेक्ट इंजीनियर एवं रिसोर्स फाइनेंस के पद आए हैं, जिस पे आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2026 तक। दोस्तों, ये तो थे कुछ रोजगार समाचार। आइनी बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

दोस्तों आपको तो पता है मेरे पास बातें बहुत होती हैं करने को, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है। समय हो चुका है जाने का, लेकिन जाने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। दोस्तों कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको अगले दिन मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों आज का प्रश्न है कि विश्व प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है। मैं अपना प्रश्न एक बार पुनः दोहरा देता हूँ कि विश्व प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है। हमेशा की तरह इसका उत्तर कल मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ही गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

पंचो जय हिंद यही नारा के साथ जौना अपन बैठकी शुरू हो रहा बा। और देख पंच भाई लोगन, इस समय बरसात का मौसम शुरू हो गया बा और यह मौसम में तरह तरह के बीमारी का शुरुआत हो जाला और बरसात में मच्छर मक्खी कीट पतंगा फफूद आदि से खतरा बढ़ जाला। जैसे जैसे बारिश होले वही तरह संक्रामक बीमारी का जौन तेजी से फैले लगेला। इस सबसे बचे खातिर सरकार जौन है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चला रहल बाटे, जेकर मुख्य उद्देश्य मौसमी संक्रामक बीमारी जैसे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया दिमागी बुखार डायरिया टीबी जैसन बीमारियन के प्रति जागरूक कैल हवे और इसे बचला का उपाय बतावल है। 1 महीना तक चले वाले ये अभियान में स्वास्थ्य विभाग नगर निगम नगर पालिका पंचायती राज्य और शिक्षा सहित कई विभाग मिलके काम करेला। एकरे तहत नालियन का सफाई कैल जाला एंटी लार्वा का छिड़काव कैल जाला फागिंग और शुद्ध पेयजल का उपलब्धता सुनिश्चित कैल जाला। साथ ही साथ ये अभियान के तहत एनम आशा बहुएँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घर जाके लोगन के जागरूक करेली और एनम और डॉक्टर का टीम लोगन के स्वास्थ्य का परीक्षण करेला जौना परीक्षण बिल्कुल जौना निःशुल्क होला। साथ ही उनके बीमारी से संबंधित दवा का वितरण भी कैल जाला। संक्रामक बीमारियन से बचे खातिर घर के आसपास पानी इकट्ठा न होके दें, छत पे खाली बर्तन टायर गमला आदि न रखें और ना ही वहाँ पानी इकट्ठा होके दें। मच्छर से बचे खातिर मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें और साथ में जौना फूल बाजू के कपड़ा जरूर पहने और रात में सोवत के समय मच्छरदानी का प्रयोग तो जरूर करें। हमेशा साफ और उबला पानी का प्रयोग करें। अगर परिवार में केहू के भी तेज बुखार होके तो ओके तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाके देखाएं। पंच भाई अपने बैठकी में चर्चा तो भइल जानकारी भी मिलल लेकिन तनी मन मनसायन करे खातिर सुनल जाएगा लोकगीत।

0: पंच भाई अपने बैठकी में गीत सुनली मन मनसाइन भइल। और यही के साथे सुनल जाए एगो जानकारी, ग्राम पंचायतों के अधिकार जे पर जानकारी देत हों डॉक्टर मनोज कुमार भारती ताई सुनी जा।
1: कि किसी भी देश का विकास गांव के विकास पर ही निर्भर होता है। यदि गांव का समुचित विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता है। आज हमारे देश की लगभग 70% आबादी अभी भी गांव में ही निवास करती है, जिसके विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों में चुने हुए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य के ही ऊपर निर्भर है। चूंकि गांव के विकास के लिए केंद्र एवं प्रदेश की सरकारों द्वारा लाखों लाख रुपए मनरेगा योजना, राज्य वित्त योजना आदि के माध्यमों से गांवों में भेजा जाता है, जिससे चुनी हुई पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा गांव की सड़कों, स्कूलों, नलकूपों, स्वार्थ आदि पर खर्च कर गांव का समुचित विकास किया जाता है, जिससे आम जनमानस के चेहरे पर विकास की तस्वीर साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ग्राम पंचायतों में सरकार की योजनाओं की जानकारी ठीक से ना होने के कारण अपना अधिकार ले पाने में कठिनाई हो रही है। आइए आज हम आप लोगों को इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होती है। इस मौके पर यह जानना जरूरी है कि ग्राम पंचायत क्या है और उसके अधिकार क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 5 जून 1947 को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने 16 सितंबर 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पारित किया, जिसमें पंचायत और उसके अधिकार के बारे में बताया गया। इस अधिनियम का मकसद था कि संयुक्त प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन व्यवस्था लागू करना एवं उनको विकसित करना। संयुक्त प्रांत राज्य अधिनियम के मुताबिक प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होती है। किसी ग्राम पंचायत में प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक हो, उसमें कुल 9 सदस्यों की संख्या होती है। जनसंख्या 1000 से अधिक होने पर एवं 3000 से कम होने पर उसमें कुल 13 सदस्य नामित होते हैं। आबादी 3000 से अधिक हो तो कुल 15 सदस्य होंगे। किसी ग्राम पंचायत के गठन के लिए उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसकी अवधि समाप्त होने के दिनांक से 6 महीने पूरा होने से पहले चुनाव कराया जाता है। ग्राम पंचायतों के पास सार्वजनिक सड़कों, जल मार्गों एवं अन्य मामलों के संबंध में कई सारे अधिकार हैं। ग्राम पंचायत नए पुलों, पुलियों का निर्माण कर सकती है। किसी सार्वजनिक सड़क, पुलिया या पुल का मार्ग बदल सकती है, बंद कर सकती है या फिर उसे समाप्त कर सकती है। अड़ोस पड़ोस के खेतों को कम क्षति पहुंचाते हुए सार्वजनिक सड़क, पुलिया या पुल को चौड़ा कर सकती है, खोल सकती है, बदल सकती है, बढ़ा सकती है या उसमें अन्य प्रकार की सुधार कर सकती है। ग्राम पंचायत लघु सिंचाई योजनाएं शुरू कर सकती है। सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई झाड़ी या वृक्ष को काट सकती है। किसी सार्वजनिक जलमार्ग को पानी पीने अथवा रसोई पकाने लायक बनाने के लिए उसे अलग करने

0: करने, मरम्मत करने, साफ करने, कीटाणु रहित करने या उसे अच्छी हालत में बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, अस्पतालों में सुधार ला सकती है और गांव के किसी समूह के लिए संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना करने या सड़क या पुल बनाने का अधिकार रखती है। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर किसी भी सरकारी सेवक की सहायता कर सकती है। ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए कोई भी अभ्यावेदन दे सकती है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में काम करने वाले सिंचाई विभाग के पतरौल, पटवारी या मुखिया को नियुक्त करने, स्थानांतरित करने या बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकती है। कुछ कर्मचारियों के गलत आचरणों की जांच करने और रिपोर्ट करने का अधिकार दे सकती है। ग्राम पंचायत का प्रधान किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित किया जाता है। प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए होता है। प्रधान का पद खाली होने पर पुनः सीधे मतदान के जरिए प्रधान का चुनाव होता है। यदि ग्राम प्रधान का पद 6 माह से कम समय के लिए खाली हो तो वहां चुनाव नहीं कराया जा सकता है, बल्कि उसके स्थान पर प्रशासक के रूप में किसी का चयन कर गांव के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें पंचायत सचिव एवं सदस्यों की ही सहभागिता होती है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने हुए ग्राम प्रधान को हटाने के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिसके लिए ग्राम पंचायत बैठक करके लोगों को प्रधान के हटाने की सूचना दें, जिसकी जानकारी लोगों को 15 दिन पूर्व होना चाहिए। ग्राम पंचायत के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। प्रधान को हटाने की बैठक उसके निर्वाचन से 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। यदि बैठक में गणपूर्ति या कोरम के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार न किया जाए अथवा वह अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाए तो उसी प्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक पहले की बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी।
1: पंच भाई, अभी आप सुनत रहे हैं ग्राम पंचायतों के अधिकार वार्ता। विषय पर जानकारी देते हैं डॉक्टर मनोज कुमार भारतीय। लगले हाथ, अब एक ठो गीत सुनल जाओ, फिर बैठ के आगे बढ़ो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386।
5: पंच भाई, अभी आप गीत सुनल गेल मन मन साइन भेल और यही के साथ ही अपने कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा बा। पंचो
6: जय हिंद।

आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित कल गेल हो। श्री मोदी सम्मान मिलने पर आभार जतौले हमें।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 111 विकास परियोजना के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। इस मौका पर श्री योगी कहने कि इस समय उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीब परिवारन के निशुल्क राशन के सुविधा का लाभ मिल रहा बा।
2: आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमने तो एक ही बात कही जो मोदी जी ने 2014 में कही थी कि सबका साथ सबके विकास का। 10 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की व्यवस्था है। उज्ज्वला योजना में हर गरीब के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, हर गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, 65 लाख गरीबों को हमने प्रदेश में फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। हर गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध करवाया है।
0: मुख्यमंत्री अजय सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपया के लागत के 99 परियोजना के लोकार्पण आ शिलान्यास कैलें। इस मौका पर वहां के कहने कि पछिला 9 वर्ष में प्रदेश में विकास का नया कीर्तिमान बनल बा आ लाखन नौजवानन के रोजगार मिलल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काली लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वृक्षारोपण महाभियान 2026 के तैयारियन का समीक्षा कैनी। वहां के कहने कि आवे वाला 12 जुलाई के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 1 दिन में 35 करोड़ पौधा का वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित कर जाए।
2: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
0: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर 11 जुलाई के अपन 7वां स्थापना दिवस मनाई। एगो रिपोर्ट।
3: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर नरेंद्र कोटवाल स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री प्रोफेसर हेमंत कुमार करेंगे। समारोह में मेघावी विद्यार्थियों का पुरस्कार वितरण भी होगा। इसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों की एक पत्रिका का विमोचन भी होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए GN चौबे गोरखपुर।

0: मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में आज सवेरे भईल एगो सड़क दुर्घटना में 3 जने के मौत हो गई। ये दुर्घटना दिल्ली दून हाईवे पर ओ समय भईल जब एगो कार टायर फटले के नाते बेकाबू होके फ्लाईओवर के नीचे गिर गईल। दौराला का क्षेत्राधिकारी दुर्घटना के बारे में पूरहर जानकारी देना है।
1: आज दिनांक 7 तारीख को सुबह 6:30 बजे पीआरबी को सूचना मिलती है कि एक गाड़ी जो अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ी है हाईवे से। सूचना पर सभी संबंधित द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके पर 2 लोग मृत पाए गए और 2 लोग गंभीर अवस्था में घायल थे, जिनको तुरंत तत्काल इलाज हेतु भेजा गया। इलाज के दौरान एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति अभी आईसीयू में भर्ती है, जिसका इलाज अभी चल रहा है।
0: प्रदेश के पूर्वी जिलन में बीतल रतिया से बरखा के आसार बनल बा। गोरखपुर के सतही एकरे लगे के जिलन में काली रात से रुक रुक के हल्का है बूंदाबांदी का क्रम जारी बा। ए इलाकन में दिन में घाम निकलने के सतही हल्का है बेरियो चलल, जैसे लोग इनके भीषण गर्मी से राहत रहल। हालांकि पूरा दिन उमसों का असर बनल रहल। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया है। श्री मोदी ने यह सम्मान मिलने पर आभार व्यक्त किया।
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीब परिवारों को निशुल्क राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है।
3: आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमने तो एक ही बात कही जो मोदी जी ने 2014 में कही थी कि सबका साथ सबके विकास का। 10 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की व्यवस्था है। उज्ज्वला योजना में हर गरीब के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, हर गरीब को आवास की सुविधा का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, 65 लाख गरीबों को हमने प्रदेश में फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। हर गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध करवाया है।
0: मुख्यमंत्री ने आज ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए की लागत की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ पौधों का वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित किया जाएगा।
3: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
0: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर 11 जुलाई को अपना 7वां स्थापना दिवस मनाएगा। एक रिपोर्ट।
4: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर नरेंद्र कोटवाल स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री प्रोफेसर हेमंत कुमार करेंगे। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों का पुरस्कार वितरण भी होगा। इसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को विशेष

0: तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों की एक पत्रिका का विमोचन भी होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
1: मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा दिल्ली दून हाईवे पर उस समय हुआ जब एक कार टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। दौराला के एक क्षेत्राधिकारी ने हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
2: आज दिनांक 7 तारीख को सुबह 6:30 बजे पीआरबी को सूचना मिलती है कि एक गाड़ी जो अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ी है हाईवे से। सूचना पर सभी संबंधित द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके पर 2 लोग मृत पाए गए और 2 लोग गंभीर अवस्था में घायल थे, जिनको तुरंत तत्काल इलाज हेतु भेजा गया। इलाज के दौरान एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति अभी आईसीयू में भर्ती है, जिसका इलाज अभी चल रहा है।
1: प्रदेश के पूर्वी जिलों में बीती रात से ही बारिश के आसार बने हुए हैं। गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में कल रात से रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी है। इस अंचल में दिन में धूप निकलने के साथ हल्की हवाएं भी चलीं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत रही। हालांकि पूरे दिन उमस का असर भी बना रहा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: पंचो जय
1: जय
0: जवान
1: जवान
0: जय
1: जय किसान।
0: किसान नारा लगल बैठकी हमन के फिर शुरू भइल। अब पंच भाई लंबे समय से इंतजार करते रहे हैं कि हमन के कार्यक्रम शुरू होके और तरह तरह के जानकारी मिले।
1: हाँ, पंच भाई लोग इस समय बरसात जौन है का खेती कर रहल बाटे और अपने खेत में धान का फसल का रोपाई भी कर रहल बाटे और साथ भी जौन बरसाती सब्जियन है ओके भी लगौले का तैयारी कर रहल बाटे। तो पंच भाई जब भी कोनो फसल लगावलन तो ये सोचलन कि कम से कम पैसा लगे और पैदावार जौन है ज़्यादा से ज़्यादा होखे। तो पंच भाई लोग जब भी खेती का काम करें और कोनो भी फसल लगा तो सबसे पहला काम ही करे के चाहिए कि लागत कम लगे एकरे खातिर सबसे पहले खेत के मिट्टी के जांच करावे के चाहिए। उससे ये पता चल जाए कि हमरे खेत में कौने पोषक तत्व के
0: कमी
1: कमी
0: बा।
1: बा, वही हिसाब से पंच भाई लोग उर्वरक का प्रयोग कर सकत हवा। तो ऐसे पहला चीज़ कि उर्वरक का जौन अनावश्यक हम उर्वरक डालत हैं वो हमके ना डाले के चाहिए। तो
0: कई
1: यहाँ
0: बार
1: से भी
0: अनावश्यक उर्वरक के चलते फसल के नुकसान भी पहुंच जाला और जौन हमन के पैदावार होला वो प्रभावित हो जाला।
1: हाँ, और जो उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं तो रासायनिक उर्वरक की जगह अगर जो हम जैविक उर्वरक का प्रयोग करें जैसे गोबर का खाद का प्रयोग करें, खली का, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब का यदि हम प्रयोग करते हैं तो ऐसे हमके मार्केट से खरीदारी भी ना करे के पड़ी और ये सब जोन जैविक खाद व वो घर में के सब्जियन के छिलका गोबर से ये सब बनावल जा सकत है। तो ऐसे भी पंच भाई लोगन का जौन है कम खर्चा में खाद भी तैयार हो जाए। और जौन कीटनाशक का प्रयोग हम अंजा करते हैं ओके बाजार से खरीद के लेने से अच्छा नीम के तेल का अगर जो प्रयोग करें, करंज का, लहसुन और हींग के मिश्रण का प्राकृतिक यदि कीटनाशक तैयार करके छिड़काव करें तो ये स्वास्थ्य के भी लाभदायक रही और साथ ही साथ हमार लागत भी कम लगी।
0: फसल भी बेहतर मिले।
1: तीसरा ये चीज़ कि जब भी हम हर साल नया बीज खरीदे ला किसान भाई लोग तो बीज के खरीदले से अच्छा हवे कि जब भी हमार फसल का तैयार होती है कट के निकलत है तो उनमें से अच्छा बीज का चयन करके ओकर शोधन करके संरक्षित कला। ऐसे भी हमके बीज खरीदले खरीदे के ना पड़ी ओकर से भी हम अपने लागत के बचावल जा सकत हैं। तीसरी बात कि जब भी खेती करें तो जौन सिंचाई कैल जाला तो हमेशा खेत के तैयार करके और मेड़बंदी अच्छी तरीके से करें कि जौन पानी है ओकर जौन पानी मेड़ी से कट के और बाहर बहेला ये सब चीज़ जौन है ना ओके इसे पानी का बचत।

0: होई और सिंचाई में कम पानी का खपत होई, तो इससे भी ईंधन का बचत होई। तो पंच भाई लोग ये बात कह रहे, और तो और सिंचाई खातिर ड्रिप विधि या स्प्रिंकल विधि के यदि प्रयोग करें तो ऐसे भी जौन है लागत कम लगी। और हमेशा खेती में फसल चक्र का उपयोग करे के चाहिए, और घास फूस हटावे खातिर मल्चिंग विधि के प्रयोग कैला से खरपतवार का निवारण के साथ साथ ओमे नमी भी बनल रहला। तो पंच भाई लोग अगर जो ये बात इनका ध्यान देके अगर जो खेती का काम करत हवें तो उनके कम लागत में ज़्यादा से
1: बढ़िया
0: ज़्यादा
1: पैदावार
0: उत्पादन
1: भी
0: मिले।
1: हुई और आर्थिक उत्पादन आर्थिक रूप से समृद्ध भी हुई है। बतकही तो हमन के चलते रही, अब लगले हाथ एक गीत सुनल जाओ, फिर हमन के बैठ के आगे बढ़िए।

0: हाँ पंच भाई, राहुल पांडे और साथियन के आवाज़ में पुरहर मन मनसाइन भइल। अब हमन के एगो बातचीत सुनल जाए।
1: फल मक्खी की पहचान व प्रबंधन जे पर जानकारी देत हूँ डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव और उनसे बातचीत करल बाटन विनय कुमार ताई सुनी जाए।
2: खेती बाड़ी का काम करे ना, फिर भी उनके मुताबिक से उत्पादन ना मिल पावेला। आ यही कारण है कि जितना भी खेती करे ना, उमे लाभ बड़ा कम मिलेला। खास तौर से जब हमन का सब्जी के बात कही जा, तो एमे बहुत कीड़ा मकोड़ा लगे ना, जो उनकी खड़ी फसल के एकदम से चौपट कर देना। यही तरह का एक कीड़ा है फल मक्खी, लेकिन ऐसे सब केहू परिचित नहीं हो पावेला। केहू समझेला कि कटुआ कीड़ा है, केहू समझेला कि ओकरे अंदर ढोला पड़ गए, रेंगे वाला कीड़ा पड़ गई, आ ओके धीरे धीरे फल बा तो पियर होत बा, सूखत बा, गिरत बा, छेद हो गई, आ फल सड़ भी जाला। लेकिन असल में फल मक्खी होले का, ओकर पहचान का हो, आओ कोना कोना समय ज्यादा प्रभावकारी रहेले, एकर प्रबंधन कैसे कई जा सकेला, यही से संबंधित जानकारी देवे खातिर डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जी कृषि विज्ञान केंद्र मलहना जनपद देवरिया से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ल हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। सही में बहुत लोग ना जान पावे न कि फल मक्खी का पहचान का है और ओकर प्रबंधन कैसे करे के चाहिए।
3: बिल्कुल सही बात कहें आप। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां जिसका मौसम में जायद और खरीफ दोनों में लगाई जाती हैं, जैसे करेला है, खीरा है, लौकी है, तुरई है, नेनुआ है, परवल, इस सब पे फल मक्खी का प्रकोप बहुत तेजी से होता है। ये फल मक्खी ऐसा कीट है जो फल पे थोड़ा सा छेद करके और वहाँ अंडे देती है, जहां से अंडे देती है वहीं से फल जो है टेढ़ा हो जाता है और बाद में पीला पड़ के गिर जाता है। बाद में अगर उसको अपना तोड़ के देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े जिनको हम मैगट कहते हैं वो ढेर सारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में दिखाई पड़ते हैं। तो इससे जो है अगर हम बचाव ना करें तो ये करीब करीब कभी कभी 80-90% फल जो है पीले पीले होकर के दिखने लगते हैं, और खास करके जो किसान करेला लगाए होंगे उसमें तो ये काफी हद तक जो है दिखाई देता है। इसी तरह खीरा हुआ, लौकी हुआ, सब में मिलता है। ये कीड़ा जो है स्पेशली जब फूल आने के बाद जैसे ही फल बनता है, आप देखते होंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो है फूल के साथ ही फल लगा रहता है, जैसे ही फल लगता है उसी समय वो फल के छेद करती है, अंडा करती है, जहां से फल टेढ़े हो जाते हैं और बाद में पीले हो जाते हैं। इसके जो मेन है वो फल मक्खी है, जिसको हम वैज्ञानिक के रूप में डेकस कुकुरबिटी कहते हैं, इसके द्वारा नुकसान होता है। अगर इसकी पहचान करनी है किसान भाई, तो ये मक्खी जो है लाल भूरे रंग की होती है और इसके सिर पे काले तथा सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसका जो बच्छ होता है वो हरापन लिए हुए पीले रंग की लंबाकार मुड़ी हुई धारियां होती हैं, और इसकी जो मादा होती है वो 6 से 7 मिलीमीटर लंबी होती है, नर अपेक्षा के छोटा होता है, और मादा का जो पेट है उदर है वो कुछ शंक्वाकार होता है और नुकेले अंडे पेच्छक के माध्यम से अंडे देती है। नर का जो उदर होता है वो गोल होता है और पंख पारदर्शी होते हैं, पंखों के सिरे पे भूरे रंग की धारियां स्लेटी धब्बे होते हैं। जब मक्खी बैठती है या अंडे देती है तो इसके पंख पूर्ण रूप से फैले रहते हैं। तो ये मक्खी की जो पहचान है आप देखते ही पता लग जाएगा कि एक मक्खी जो चमकदार रंग की दिखाई देगी, लाल भूरे रंग की, वही मक्खी जो है वो नुकसान कर रही है।
2: ये फल मक्खी का सिर्फ फल के अंदरे अंडा देले, या जब ये फल ना रहेला तो कहीं और भी अंडा देके आपन जीवन चक्र पूरा करेले?
3: इनका जो अंडा देने का है, ये जमीन पे भी अंडा देती है, मिट्टी

0: के अंदर वहां भी प्यूपे बनते हैं, फिर वहां से ये वयस्क होकर के उड़ान भरती हैं। तो इनका जो मतलब फल के साथ साथ जो है ये पत्तियों के जो कोपले होते हैं ना, लौकी लो या ननुआ के करेले के कोपले, कोपलों पे भी ये अपना छेद करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे वहां पे गांठ बन जाती है और वहां से विकास भी रुक जाता है। खाली फल पे ही नहीं लगती बल्कि इसके जो कोपलों पे है उनका भी असर, उस पर भी इसका असर देखा जा सकता है।
1: एकर अंडा फल की अंदर चल जाला आ वही जैसे फूट के आ ओकरे अंदर लार्वा बन जाला और मैगट बन जाला, जैसे आप बताओ तनी। तो
0: जी
1: एके कैसे पहचानल जाई कि बतिया जवनी छोट बा एकरे अंदर एकर प्रकोप हो गइल बा?
0: अगर फल को ध्यान से देखेंगे तो उस पे जो है सुई के नोक के आकार का जो है धब्बा दिखाई पड़ेगा पहले शुरुआती दौर में, और जैसे जैसे फल बढ़ता होगा वहीं जहां से धब्बा पड़ेगा वहीं से मुड़ना शुरू कर देगा या वहीं से पीला होना शुरू कर देगा, ये इसका जो है लक्षण दिखाई देगा आपको।
1: एकर जीवन चक्र कौना तरह से पूरा होला फल मक्खी का, ताकि जीवन के अलग अलग स्थिति में लोग पहचान सके?
0: इसका जो नर और मादा होती हैं जिसके बारे में हमने पहले बताया, नर और मादा दोनों मेटिंग करती हैं तो फिर अंडे देती है, अंडे देते हैं, अंडों से जो है प्यूपा निकलता है और वो प्यूपा जमीन पे जाता है, ज्यादातर जमीन के अंदर रहता है और वहीं से फिर ये व्यस्क कीट बन करके प्यूपा से निकल करके नुकसान पहुंचाते हैं।
1: अंडा से लार्वा बनेला और लार्वा के बाद प्यूपा बनेला।
0: हाँ
1: अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात ही बा कि
0: जी
1: इतना फसल के नुकसान पहुंचावे वाला कीड़ा है और इतना छोटा बाटे और एकदम नाजुक अवस्था में ही फल के प्रभावित कर देला, तो एकरे प्रबंधन खातिर कौन कौन उपाय बा, ताकि अपना के आ जितना भी सब्जी वाली फसल है ओकरे फल के बचावल जा सके?
0: देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगर फल मक्खी का अटैक कर दिए फल पे तो फिर उसको बचाना मुश्किल हो, तो अंदर की अंडा चला गया फिर वो पीला पड़ जाएगा तभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो हमें जो बचाना है वो फल लगने से पहले यानी जब फूल आने की प्रक्रिया हो उसी समय या खेत में हमको शुरू से ही इस तरह का व्यवस्था करना पड़ेगा जिससे इन कीड़ों को पनपने ही न दिया जाए। इसके लिए जैसे कि है कि हमेशा जो हाँ भी बेल हो उसके नीचे भी कुछ गुड़ाई बराबर करते रहना चाहिए जिसमें उसमें जो मिट्टी में जो उपस्थित प्यूपा है वो सब नष्ट हो जाए। सबसे पहले है कि इसको अगर करना है तो हम कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम किनारे अगर लगा दें तो ये कीड़े जाकर के उस पे जो है बैठते हैं, और अगर हम कोई दवा का स्प्रे कर दें, दवा का छिड़काव कर दें तो वहीं पे हम कीड़ों को मार सकते हैं जो हमारी मेन फसल उसको बचा सकते हैं। इसके लिए जैसे कि हम मक्का मक्का की फसल को हम अगर लगा दें चारों तरफ तो उसमें कीड़े जाकर के बैठ जाएंगे। तुलसी है, तुलसी को लगा दें वहां पे जाकर के बैठ जाएंगे, और उसके ऊपर फिर हम मेलाथियान डाइक्लोरोवास या कार्बारिल का स्प्रे करके उनको वही कीड़ों मार दें जिससे कि वो हमारा मेन फसल मुख्य फसल जो हमारी सब्जी है उसका रुकाव हो सके।
1: जवन सबसे बड़ी समस्या होला कि बहुत ऐसन फल हुआ जवना के सब्जी के रूप में प्रयोग कैल जाला, अगर हानिकारक दवा का छिड़काव खेत में कैल जाला तो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होला। तो
0: बिल्कुल
1: कौन
0: सही
1: कौन
0: बात है।
1: ऐसन उपाय बा कि कीड़ा भी मर जाओ और ओकर फल भी सुरक्षित रहे?
0: बहुत सही आप प्रश्न किए हैं, क्योंकि आजकल जो हमारी देखा जा रहा है जो ज्यादातर बीमारियां हो रही हैं वो हमारे केमिकल या रसायन के प्रभाव से भी ज्यादातर बीमारियां हो रही हैं। इनको बचाने के लिए हमें आवश्यक है कि कम से कम हम केमिकल्स का जो है वो छिड़काव करें। देखिए, सबसे बढ़िया अगर आप देखें तो हमें नीम का जो तेल बाजार में मिलता है, नीम के तेल का अगर हम 3% की दर से परतों पे छिड़काव करें, ठीक है, या जो बाजार में नीम का एजाडेक्टिन नाम का जो नीम का तेल आ रहा है उसमें जो है 1000 PPM या 1500 PPM की आती है, तो जो 1500 PPM की तेल नीम का तेल आता है उसको आप 4 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर, और जो 1000 PPM का आ रहा है उसको 6 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके तो अगर हम पौधों पर छिड़काव करें शुरुआती दौर में फूल आने से पहले या फूल आने की दशा में, तो हम इस कीड़े को आने से पनपने से रोक सकते हैं।
1: कहला का मतलब कि जौन नीबी का तेल बा
0: जी
1: ओकर औसतन 5 मिलीलीटर
0: प्रति
1: यानी कि
0: लीटर
1: दवाई वाला जौन 1 चम्मच होला
0: जी
1: ओतनी दवाई नीबी का तेल आ 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर छिड़काव कैल जा तो कीड़ा के फसल पर अइला से रोकी और साथ ही साथ जौन अंडा बाटे ओकर भी निषेचन ना हो पाई।
0: बिल्कुल सही कहे आप। अगर ऐसे मान लीजिए लगने की स्थिति आ गई, थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो गया, तो अगर आप तंबाकू का चूर्ण होता है ना, तंबाकू का चूर्ण या मिट्टी का तेल, इसको राख में मिला करके अगर हम इसको बेल पे डाल देते हैं तो भी उनका

0: प्रभाव कम होता है, वहाँ पे ये कीड़े नहीं आती हैं।
1: बहुत लोग बतावे ला कि बाजारी में तमाम ऐसा तरह का दवाई आ गई बा कि एक जगह रख द तो कुल कीड़ा वही दवाई के तरफ चल जाइ आ दवाई के खा के चाट के या वो में डूब के मर जाइ अब पूरा फसल आपका सुरक्षित रही।
0: बिल्कुल सही बात तो आपका है। ये क्यू ल्यूर ट्रैप बोलते हैं, जाल लगाना ल्यूर का। अगर हम इस तरह का ट्रैप लगा देते हैं, जाल जिसको कहते हैं, जाल लगा देते हैं, तो जो मादा कीड़े हैं वो आकर्षित होकर के वहां चली जाती हैं। और जैसे एक मिनरल बाटल होता है ना पानी का, उस पानी के अंदर हम क्यू ल्यूर लगा करके ऊपर अगर चिपका के रख दें तो सारे कीड़े जो है उसके अंदर जाएंगे और वहां पे जाकर के मर जाते हैं, जिनको हम पकड़ करके हम वहां पे किसी दवा में डाल करके या गड्ढे में दबा करके उनको मार सकते हैं। तो इसके लिए क्यूलोर आता है, उसमें इथनॉल, क्यूलोर और कार्बारिल। इथनॉल एक आप जानते हैं, इथनॉल एल्कोहल होता है, क्यूलोर मिल जाएगा बाजार में, और कार्बारिल एक दवा होती है। अगर हम तीनों के मिक्सर को, जिनका 8 और 1 और 2 के अनुपात में 25 जाल 25 ट्रैप अगर हम 1 हेक्टेयर खेत में जगह जगह रखते हैं, तो इन पे पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। सारी फल मक्खी की जो बेस्क हैं वो वहां जाकर के इकट्ठा हो जाएंगी, जिनको हम इकट्ठा करके कहीं दूसरे स्थान पे जाकर के नष्ट कर सकते हैं।
1: बनल बनावल ट्रेप भी तो बाजार में आवत हुई जवना के सीधे
0: बिल्कुल
1: खरीद के आ
0: हाँ
1: खेत में लगावल जा सके।
0: बिल्कुल, एलो ट्रेप या क्लोरो ट्रेप के नाम से आती हैं, बाजार में मिलती हैं, उन ट्रेप को ला करके अपने खेत में लगा सकता है। इसके अलावा ये है कि जैसे कि अपना किसान चाहे तो घर में ही इस तरह का एक चारा तैयार कर ले, जिससे किस जिसपे उस पर आ जाएंगी मक्खी। पुराना कद्दू हो, कोहड़ा, उसको ले लीजिए, उसको कूच लीजिए, ठीक है, या उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़े में, और उसमें मैलाथियन 1% की घोल का जो है 10-12 बूंदे डाल करके, और उसको जमीन पे विभिन्न स्थानों पे खेत में फैला दिया जाए, तो चूंकि वो मीठा होता है तो उसे फल मक्खी ज्यादा अटैक करती हैं, तो उसको खा करके मर जाती हैं। दूसरा चीज हो सकता है कि फल मक्खियों के जो आकर्षित करने के लिए किसी छिछले बर्तन में चीनी या सीरा का घोल बनाएं, उसमें 0.1% जो है मैलाथियन या कार्बारिल का घोल डाल करके उसमें घोल दीजिए। और अगर हो सके, जैसे इस समय मौसम चल रहा है, तो एक देहात में अभी ताड़ का जो है रस मिल जाएगा, जो तो थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड हो, अगर
1: ताड़ी सिरका
0: इसको ताड़ी, हाँ अगर इस हाँ ताड़ी या सिरका मिला करके, और इन सबों को मिला करके सीरा और दवाई और ताड़ का रस, ये तीनों मिला करके छिछले बर्तन में जगह जगह अगर 10-12-15 जगह रख दिया जाए एक एकड़ खेत में, तो वहां जाकर के वो विष को उनका चुग्गा होता है, उसको खाती हैं और मर जाती हैं।
1: कहला का मतलब कि यह तरह से अगर फल मक्खी का प्रबंधन कई जा तो खेत में कोनो रासायनिक दवा ना डाले के पड़ी आ यही के वजह से ओकर जहरीला असर अपने फल फूल पर ना आई अपने साग सब्जी बातौन सुरक्षित रही।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव इतना अच्छा जानकारी देनी कि फल मक्खी का पहचान कहा ओकर प्रबंधन कैसे कैल जा सकेले एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: पंच भाई, अभी आप सुनल गेल बातचीत फल मक्खी की पहचान और प्रबंधन जे पर जानकारी देते रहना। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव इतना निमन जानकारी देवे खातिर इनके दिहल जाए धन्यवाद, और अपने बैठकी में मन मन साइन करे खातिर सुनल जाएगो लोकगीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551।

0: 1-220-5386। 0551 हमारा एसटीडी नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत। हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: पंच भाई अपने बैठके में गीत सुनली मन मन सैन भेल, और यही के साथ ही अपने कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहल बात।
3: चलो पंचो, जय जवान जय किसान।

0: सामने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
6: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
7: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
6: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
7: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
6: गाने के बोल,
7: गीतकार
6: और संगीतकार,
7: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
6: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
7: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
6: गाते गुनगुनाते।

आकाशवाणी का एक गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में लीजिए, सुनिए रजना श्रीवास्तव को। रंजना श्रीवास्तव से लीजिए, सुनिए सबसे पहले ये पारंपरिक गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: आपकी पसंद, आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा एसटीडी नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात direct to home की और direct to heart,
2: ये सारे चैनल्स होंगे free to air, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात direct to heart की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे रंजना श्रीवास्तव को। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। भोजपुरी बोली के कार्यक्रम देश हमार में लीजिए सुनिए मुकेश कुमार से काव्य पाठ।

0: भोजपुरी बोली के कार्यक्रम देश अमर में अभी आप सुन रहे थे मुकेश कुमार श्रीवास्तव से काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक संगीत में लीजिए सुनिए राजस्थानी लोकगीत।
1: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

प्रादेशिक संगीत में भी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। युगल गीत आप सुनेंगे 7:31 पर। हिंदी कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00, जिसमें आज आप सुनीता सिंह से काव्य पाठ सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे अभिजीत को। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। न्यूज 8:09 रात्रि 9:00 आप सुनेंगे। स्पॉटलाइट कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे मनी टॉक कार्यक्रम। रात्रि 9:45 पर आप सुनेंगे मंथन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00 हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर, जिसमें आज आप राग शुद्ध नट मल्लिकार्जुन मंसूर से सुनेंगे। हिंदी समाचार आप सुनेंगे रात्रि 11:00 और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव 330.03 यानी 909 kHz एवं 100.1 FM पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्यप्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने पूरे प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय को निर्दोष बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कार्यप्रणाली में उनसे असावधानी जरूर हुई।
1: 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन कार्य पद्धति के बारे में वे स्वयं असावधान रहे, ये बात तो माननी पड़ेगी।
0: श्री गिरी महाराज ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह निगरानी में कमी और सावधानी न बरतने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
1: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, यह निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
0: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा है कि वह एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की एक सप्ताह की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 18 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा, सुशासन और रोजगार का एक मॉडल स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह बात आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
2: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर को 819 करोड़ रुपए से अधिक की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता जब अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल बनता है, और जब सुरक्षा का माहौल होता है तो प्रगति को गति भी मिलती है, जिससे विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती मिलती है।
2: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल जब खड़ा होता है तो विकास भी होता है, और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और बारिश के मद्देनजर संभावित बाढ़ को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। हरियाली का यह उत्सव जन सहभागिता से मनाया जाएगा। अभियान को लेकर आज वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने राज्य सरकार के मंत्रियों संग बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बैठक में कहा कि 12 जुलाई को सभी विभागों के सहयोग से पूरे प्रदेश में पौधरोपण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र, प्रदेश सरकार के विभागों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों की सहभागिता रहेगी। उन्होंने बताया कि नोडल वन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधे लगाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 12 जुलाई को प्रस्तावित वृहद वृक्षारोपण अभियान को पूरी तैयारी, समन्वय और जवाबदेही के साथ संपन्न कराया जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का आज 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 छात्रों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 छात्रों को डिग्री और 52 छात्रों को PhD अवार्ड भी प्रदान किए गए। प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज वृंदावन में बताया कि प्रदेश के कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार होमगार्ड्स विभाग में तैनात अवैतनिक अधिकारियों को भी इस सुविधा के दायरे में लाया गया है।
4: एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। होमगार्ड के जवानों के लिए हर थाने में 2 रूम की व्यवस्था रहेगी, एक रूम लड़कियों के लिए, एक रूम लड़कों के लिए। होमगार्ड और अवैतनिक हमारे पदाधिकारी सभी के परिवार को कैशलेस की व्यवस्था से जोड़ा है। आयुष्मान की तरह 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवान, कल ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं होमगार्ड विभाग के लिए सभी।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
5: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर आज सुबह का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
0: हॉकी इंडिया ने ओमान के मस्कट में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली मेंस यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 से पहले राष्ट्रीय शिविर के लिए उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को चुना है। इन खिलाड़ियों के नाम शाहरुख अली, राहुल यादव, केतन कुशवाहा, रोमित पाल और प्रहलाद राजभर हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजधानी लखनऊ समेत फरुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ समेत कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष। कहा का

कार्य प्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स एवं 100.1 FM पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। युगल गीत में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म तेरे घर के सामने से ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी व लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तेरे घर के सामने, फिल्म से ये गीत। अगला गीत है फिल्म नया दौर से,

0: युगल गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आपकी पसंद, आपका गाना। और

0: और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है चली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
5: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
4: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
5: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

इस गीत के बाद लीजिए सुनिए फिल्म गाइड से ये गीत।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से किशोर कुमार व लता मंगेशकर को। इस गीत के साथ ही युगल गीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए

यह विधाता छंद आधारित मुक्तक है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। नदी जब चलती है अनेकों बाधाओं को तोड़ते हुए, एक कल कल झरझर करते हुए अपनी ही गति से वो आगे बढ़ती है। मेरी कविता नदी और नारी इन दोनों को लेकर के लिखी गई है। जरा

किराया ले लो, सफ़र आसान लगता है। नदी जब चलती है तो ऐसा नहीं है कि उसे रास्ते सीधे मिल जाते हैं, उसे कई जगह बड़ी शिलाओं को, पर्वतों को लांघते हुए आगे बढ़ना होता है। उसी तरह से हमारा जीवन होता है, कहीं ऊंच

यहाँ मंजिल सहो जग की रुखाई भी। नदी की तरह ही नारी शक्ति का जीवन होता है। अगर परिवार और घर वालों का सहयोग मिल गया तो वो अपनी मंजिल पा लेती है, नहीं तो उसे कदम कदम पे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बसाती गांव शहरों को फसल दे,

अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो सभी जानते हैं, और इसकी बागडोर हमारे प्रधानमंत्री ने दो महिलाओं के हाथों में दिया था, वयोमिका जी और कर्नल सोफिया कुरैसी। मेरी चंद पंक्तियाँ इन नारी शक्तियों को भी समर्पित हैं। लिया बदला तभी मानी, लिया बदला तभी मानी, लड़ी नभ ओ।

चंद की प्यारी सुघड़ सुभ व्योमिका कहते, सुता वो हिंद की प्यारी सुघड़ सुभ व्योमिका कहते, कमर आतंक

नमन जग ज्योति का कहते, मुलाजिम वायु सेना की नमन जग ज्योति का कहते। धरा अभिमान यह करती

की जानो करे अठ खेलिया नभ में, गुनाहों को मिटाने को शपथ ले सांगना ऐसी। बहादुर व्योमिका बेटी नहीं वह हार ना जाने, बहादुर व्योम

रोज वीरों सा सुनी जब अर्ज माटी की। और हमारी बहादुर शेरनी सोफिया जी, लिखे हम शौर्य की गाथा।

का बदला बना यह देश अभिमानी, बढ़ाया मान भारत का बढ़ा तब हौसला सबका, डरे अब पाक के सैनिक चली जब शेरनी रानी, डरे अब पाक के सैनिक चली जब शेरनी रानी, उड़ाई नींद आंखों से कयामत।

और एक सवैया जिसे छंद में सुंदरी सवैया कहा जाता है, यह भी मैंने पाक पे ही लिखा हुआ है। जब पाक करे नित घात सखे, जब पाक करे नित घात सखे, सुत वीर सभी मिल धुल चटाते। जब पाक करे नित घात सखे, सुत वीर सभी मिल धुल चटाते। हर चाल नया

फन सापन का कुचले अब भारत, फन सापन का कुचले अब भारत, नागन को नहीं दूध पिलाते, फन सापन का कुचले

और मेरी चंद पंक्तियाँ माँ धरा को समर्पित, जो आजकल के मनुष्य अपने लोभ और स्वार्थ में जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हम सभी भुगत रहे हैं। चुरा कर नूर धरती का हंसे क्यों आज रे मानव, चुरा कर नूर धरती का हंसे क्यों आज रे मानव, सजर सूखे यहाँ सारे, सजर सूखे यहाँ सारे, करे क्यों नाज रे मानव, चुरा कर नूर धरती का, चुरा कर नूर धरती का हंसे क्यों आज रे मानव, बड़ी बेबस लगे नदिया, बड़ी बेबस लगे नदिया, नहीं दिखता कहीं साहिल, लगा कश्ती किनारे जो, लगा कश्ती किनारे जो, करो यूं काज रे मानव, नशा दौलत बुरा साखी, आजकल दौलत की ही तो देन है, जंगलों का सफाया होते जा रहा है, ताल तलैया पटते जा रहे हैं और बड़े ही जोरों शोरों से अट्टालिकाएं खड़ी होती जा रही हैं। नशा दौलत बुरा साकी, चढ़ाए नैन पर पर्दा, इनायत हो गरीबों पर,

अभी कोई मिले रोटी सभी को अब, नहीं शोषण नहीं शोषित सजे सुर साज रे मानो, खिले मुस्कान अधरों पर, खिले मुस्कान अधरों पर दमकता नूर हो प्यारे, यही अर्जी सरोवर की सजे सर ताज रे मानो, यही अर्जी सरोवर की सजे सर ताज रे मानो। आते हैं हम फिर दोबारा माँ भारती की तरफ और जो सरहद पर तैनात हैं, चंद शेर उनके लिए भी। सरजमी की आन पर निज थल लुटाना याद रख, सरजमी

0: उनके सदा ही एक तराना याद रख।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुनीता सिंह से काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अभिजीत को।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech, Polytechnic, MBA, MCA, BBA, BCA, B Pharma, M Pharma और D Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिजीत को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिजीत को। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स एवं 100.1 एफएम पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 8:44 हुए हैं। कुछ क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।

0: से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान

0: और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
6: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी

0: में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुँच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. Three persons killed and six go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
5: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है
4: Here is more from a correspondent covering the Prime Minister's visit.
6: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Mr. Modi said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and common vision for the future. The Prime Minister said India believes in development, peace, stability and prosperity. Mr. Modi stressed the need for collective action against terrorism and unilateral actions that undermine regional security. He emphasized global South stability besides Indo-Pacific. The Prime Minister called for deeper cooperation in defense, maritime security, trade, digital technology, educational, artificial intelligence and critical minerals. He also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Jakarta, Indonesia.
4: The Prime Minister reached Jakarta last evening on the first leg of his three-nation visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Earlier today, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Prime Minister Modi also addressed the Indian community at Jakarta this evening. He said India's economy is playing a major role in driving global growth. He said the government is working on the mantra of reform, perform and transform.
5: Aaj Bharat ki arthavyavastha दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 billion aspirations in motion.
4: The Prime Minister said India's journey towards self-reliance is becoming a multiplying force, not only for Indonesia, but for the entire ASEAN region. He stressed that India and Indonesia share a common vision of development and cannot afford to wait or slow down. Indonesian President Prabowo Subianto, in his address, said he has an Indian DNA. He said the achievements of India, both at the union level and across its states, are truly remarkable, and he closely follows this remarkable journey.
7: I want to admit that I am a great admirer of Narendra Modi ji. and I studied the policies of your Prime Minister.

0: Manhattan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम मंथन। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। डॉक्टर अरोड़ा, आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद श्रेया जी आमंत्रित करने के लिए।
2: धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे श्रोताओं को आप ये सरल शब्दों में बताइए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई।
3: तो ये डिजिटल मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने श्रोताओं से एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। और वो सवाल ये है कि कोविड के दौरान जब कोविड का टीकाकरण हो रहा था, तब हम सबको याद है कि किस तरीके से कोविन पर हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जा रहा था, और साथ ही साथ जब पहला टीका लगता था तो उसका अब सर्टिफिकेट आ जाता था, दूसरा हो तो फिर सर्टिफिकेट दूसरे के लिए हमें याददाश्त हमें याद कराया जाता था, और दोनों टीके लगने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था कि हम पूर्णतः अब सुरक्षित हैं कोविड से। तो इस प्रकार ये कमाल और ये जो हमारा अनुभव रहा है उसका कारण डिजिटलाइजेशन था, और इसी डिजिटलाइजेशन को अब एबीडेम या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में सोचूं तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कदम है सरकार की तरफ से, जिससे हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुविधापूर्वक मिल सकें, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। और इसमें दो चीजें और हैं, तो एक तो सुविधा बढ़ जाए लेकिन साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो कुछ हो रहा है वो साफ ढंग से पता चलता रहे, ये इस एबीडेम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जैसा कि श्रेया जी ने हमको बताया कि चाहे वो हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं सब जगह, और अभी आभा आईडी है, आभा आईडी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, ये किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, और जीवन के हर पहलू में ही नहीं लेकिन मेरे पूरे परिवार की स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा बिना किसी परेशानी के।
2: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे अभी आपने आभा हेल्थ आईडी की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि इस मिशन का सबसे प्रमुख आधार अगर हम देखें तो आभा हेल्थ आईडी ही है, तो आम नागरिक के लिए यह कितनी उपयोगी है और इससे इलाज की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह आसानी लाई जा सकती है।
3: आभा आईडी का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो हमें एक ओपीडी कार्ड मिलता है या हमें वहां का रजिस्ट्रेशन मिलता है, और हर जगह जैसे नई जगह जाते हैं तो हमें नया कार्ड मिलता है। आभा आईडी का मतलब ये है कि मेरे पास जो आभा आईडी है, मैं किसी भी अस्पताल में जाऊंगा, किसी भी स्वास्थ्य फैसिलिटी में जाऊँगा, तो मेरे को हर बार वही आभा आईडी मेरा रहेगा। इसके साथ साथ एक और भी फायदा ये है, जो सबसे बड़ा फायदा है, कि जो मेरे को अभी तक इलाज दिया गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट फैसिलिटीज में, वो भी उसके अंदर एंटर्ड रहेगा। तो मेरे का एक तरीके से एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य संबंधी पूरा इतिहास है वो इकट्ठा एक जगह मिल जाता, मेरे को अपने साथ कागज ले जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, उसके लिए परेशानी नहीं होगी। हम लोगों से कागज गुम हो जाते हैं, इसी तरीके से जो जांचें कराई होती हैं वो कभी समय पे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, पता नहीं चलता कि कब कराई गई थी। लेकिन आभा आईडी का मुख्य उद्देश्य ये है कि सारा मेरा जो स्वास्थ्य संबंधी इतिहास है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता रहता है। और दूसरा ये है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैंने आज दिल्ली में दिखाया और उसके बाद भोपाल जाना पड़ा और वहां पर अपना जांच करा रहा हूं, तो वो मेरा आभा आईडी एक तरीके से मेरे साथ साथ चलता है, और वहां पर आभा आईडी को देख करके वहां के डॉक्टर चिकित्सक जो स्वास्थ्यकर्मी है वो मेरा पूरा स्वास्थ्य का इतिहास देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि हर एक व्यक्ति का किसी भी बीमारी का होना और उसका उसका जो दवाई दी जाती है, इलाज कराया, उसका प्रभाव पुराने स्वास्थ्य इतिहास पे भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से मेरे साथ मेरा स्वास्थ्य का इतिहास, साथ में जो इलाज किया गया, जो जांच की गई थी, वो मेरे साथ साथ चलती हैं आभा आईडी के रूप में।
2: डॉक्टर अरोड़ा, तो अभी आपने जैसे बताया कि आभा हेल्थ आईडी से हम किस तरह से ये जो डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा है ये काफी आसान हुई है, आप इसे भारत की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव समझते हैं?
3: ये तो आमूल परिवर्तन रहेगा। जिस तरीके से शुरू में जब आधार का नंबर दिया जा रहा था, आधार नंबर किया जा रहा था, लोगों के मन में संशय था, लोगों को पता नहीं चलता था

0: स्पेस में, मेरे को याद रहे ना रहे, डॉक्टर दूसरे के पास जब जाएंगे तो वो उसको देख सकता है कि पहले क्या हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपके अलावा उसको कोई नहीं जानता। अगर डॉक्टर भी देखना चाहता है आपके पुराने रिकॉर्ड को, तो ओटीपी आपका, आपसे डॉक्टर कहेगा कि वो आपका रिकॉर्ड खोलना चाहेगा, आप अब आईडी बताएंगे, आपका ओटीपी आएगा आपके टेलीफोन पे, मोबाइल पे, और तभी वो उनको देख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये प्राइवेसी वाला जो कंपोनेंट है, ये भी उतना ही इसके साथ बना रहता है। और कुल मिलाकर ये, मैं जो हम चाहते हैं कि जो मेरी बीमारी है, मेरी जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है, उसमें गोपनीयता बनी रहे, तो वो गोपनीयता भी बनी रहती है, और वो किसी को जरूर कि दूसरे को पता चले ऐसा नहीं होता। इवन डॉक्टर भी अगर देखना चाहेगा तो वो आपके परमिशन के बिना उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता।
1: तो डॉक्टर अरोरा, जैसे कि अभी आपने गोपनीयता की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे हम डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एआई के बढ़ते उपयोग के साथ लोगों के मन में जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर काफी सवाल रहते हैं, जिसकी अभी आपने चर्चा भी की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, ये इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार करता है?
0: तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आभा आईडी के थ्रू आपका रिकॉर्ड आपका डॉक्टर भी नहीं देख सकता, वो केवल आपका रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ये रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कोई और ना देख सके। तो गोपनीयता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से आधार के बारे में है, तो आधार की भी गोपनीयता बनी हुई है, उसी तरीके से आभा आईडी की गोपनीयता भी पूर्ण तरह सुरक्षित की गई है। और उसमें कई लेयर्स हैं सुरक्षा के कारण, जिसको फायरबॉल्स कहते हैं, कि उसको कोई देख ना सके। और कुल मिलाकर के ये जो मन में एक चिंता है एक आम व्यक्ति के मन में, तो मैं उसका पूर्णता उसको कहूंगा कि निराकरण करें उस चिंता से, कि ये पूर्णतः गोपनीय है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो किसी को भी नहीं पता चल सकती, अनलेस अगर आप खुद नहीं बताना चाहें तो।
1: जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि ये जो नई आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है, जिसमें हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बीमा जानकारी या फिर जो एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई सुविधाएं जो इसमें जोड़ी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बने जहां नागरिकों को लगभग सभी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पे मिल सकती हैं? तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप सरल शब्दों में बता सकें।
0: आरोग्य सेतु, फिर मैं आपको कोविड के दौरान ले जाऊंगा। आरोग्य सेतु 1.0 जो था वो कोविड के साथ बना था,
1: जी
0: और उसमें ये था कि अगर आपको कोविड के इलाज से संबंधित कुछ सूचना चाहिए, आपको अपने आसपास कितने मरीज हैं उनके बारे में पता करना है, आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है जहां पर आपको इलाज मिल सकता है या जहां पर जांच की जा सकती है, वो उसमें था। तो आरोग्य सेतु 2.0 जो है वो उसका आगे विकास किया गया है, कि अब मेरे को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, सबसे नजदीकी कौन सी स्वास्थ्य सेवा है जहां पर मैं जा सकता हूँ। एक उदाहरण के लिए, रात को मध्य रात्रि में कोई महिला प्रसव में जाती है, उसको डिलीवर मतलब पेन्स शुरू हो जाते हैं, और उसको अब किस अस्पताल में ले जाऊं, तो ये आरोग्य सेतु से मेरे को पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ डिलीवरी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। इसी तरीके से किसी को दिल संबंधी परेशानी है या जिगर संबंधी परेशानी है, और वो चाहता है कि उसके सबसे नजदीक जो और विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस हैं बीमारी को देखने के लिए, वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, वो करा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ आएगा कि ये हम सब लोगों को जरूरत होती है, इन सारी जरूरतों का, और खास तौर पर इमरजेंसी के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने आरोग्य सेतु खोल करके और जो मेरी स्वास्थ्य समस्या है वो उसमें डाली और कहा कि भाई मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपको एक गाइडेंस दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो एक जीवन में उसको और बेहतर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि समय के साथ जैसे कि हमारे शहर बड़े हो रहे हैं और हर एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता, अभी खाली वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से सुन करके हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु जो है 2.0, ये

0: यानी कि वास्तविकता धरातल पे क्या सिचुएशन है उसके आधार पर हमें गाइडेंस दे सकता है।
1: जी, और जैसा कि अभी हम देखते हैं कि स्कैन एंड शेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का इंतजार कुछ मिनटों तक सीमित हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था मरीजों और अस्पताल दोनों के अनुभव को बेहतर बनाएगी?
0: हाँ, ये अब जो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकारी अस्पताल सरकारी दफ्तरों के हिसाब से चलते हैं और उसकी वजह से मरीज को परिवार को काफी असुविधा झेलनी पड़ती है, जबकि बीमारी ना अपॉइंटमेंट लेकर के आती है और जब हमें जरूरत होती है तब हमें चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी की जरूरत होती है। तो डिजिटलाइजेशन से और एक टेलीमेडिसिन की बेसिस पर हमें जिस समय 24 घंटे में जिस समय जो सुविधाओं की जरूरत है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और खास तौर पे ये देखा गया है कि जो चिकित्सा संस्थान है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहाँ पर टेलीमेडिसिन की सर्विसेज अब काफ़ी लंबे समय तक उपलब्ध होती हैं, जिससे कि हम उनसे बिना वहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे जाए हुए हमें कंसल्टेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक और भी फायदा है और वो ये है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में मेरा कोई इलाज चल रहा है, मेरी सर्जरी हुई है, अब उसको डॉक्टर के पास 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा दिखाना है और डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ और 5 मिनट मेरे से पूछता है और वो कहता है अब मैंने मतलब 2 दिन खर्च करके गया हूँ अस्पताल में। तो इस तरह से फॉलोअप के लिए भी जो टेलीमेडिसिन है या ये डिजिटलाइजेशन का सारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। एक और चीज भी करी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो जो मेरा स्थानीय डॉक्टर है उसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई आप चले जाइए इनके पास, ये आपकी देखभाल उतनी अच्छी करेंगे जितने एक बड़े संस्थान में किया गया था। तो कुल मिलाकर ये डिजिटल इकोसिस्टम मेरे जीवन में एक उसको बेहतरी ला रहा है, उसमें सुविधाजनक बना रहा है और मेरी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास है।
1: जी, तो जैसा डॉक्टर एन के अरोड़ा ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलू हैं और इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक केवल सुविधाएं बढ़ाने का माध्यम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रभावी साधन भी है। इसी संदेश के साथ ये कार्यक्रम मंथन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एन के अरोड़ा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलुओं पर बेहद सरल और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रेया जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल तर्पण।
4: खेल दर्पण, खेल दर्पण, दर्पण।
5: खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत AJ अमरजीत सिंह और इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है सरस्वती पाठक। खेल प्रेमी श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए पहले अयोध्या मंडल की स्थानीय खेल खबरों की ओर चलते हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित 2 दिवसीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का बुधवार 1 जुलाई को समापन हुआ। ये प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों के तहत आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के अटल बिहारी क्रीड़ा स्थल पर इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग के लिए कबड्डी, खो खो, बोरी दौड़ और लंगड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा बालक वर्ग के लिए गुल्ली डंडा और कंचा प्रतियोगिताएं भी शामिल थी। इन पारंपरिक भारतीय खेलों का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक दक्षता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जुड़ाव बढ़ाना था। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति

0: डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और इनके संरक्षण से युवाओं को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रतिभागियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसे विश्वविद्यालय की एक सराहनीय पहल बताया। अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आयोजित 4 दिवसीय चयन ट्रायल के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मकबरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल मुकाबले में अंबेडकर नगर की टीम ने सुल्तानपुर को 55 रनों से पराजित कर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अंबेडकर नगर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 215 रन बनाए। टीम के बल्लेबाजों ने संयमित और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुल्तानपुर की टीम 160 रन पर ही सिमट गई और मुकाबला 55 रनों से हार गई। क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव उमेर अहमद ने बताया कि अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी के लिए मंडल स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं। ट्रायल में अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और गोंडा जनपद के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनकर्ताओं की ओर से खिलाड़ियों के बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण कौशल का बारीकी से मूल्यांकन भी किया गया। अयोध्या में 8.84 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा मकबरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा स्टेडियम के उच्चीकरण और नवीनीकरण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या के विकास खंड है रिंगटनगंज की ग्राम पंचायत ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और स्टेडियम की फिनिशिंग अंतिम चरण में है। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मल्टीपर्पज हॉल, बाउंड्री वॉल, बोरिंग गार्ड रूम, पंप हाउस, सीसी सड़क, ओपन जिम तथा आधुनिक रनिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा। स्टेडियम के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र में खेल गतिविधियों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधाएं प्राप्त होंगी। खेल दर्पण में अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना से। आकाशवाणी अयोध्या एफएम की ओर से सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद सर।
0: और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या में इस समय कौन कौन सी खेल गतिविधियाँ हैं जो चल रही हैं।
1: अयोध्या में बताना चाह रहा था कि पूरे यूपी का सबसे बड़ा एक स्टेडियम है, जो कि लगभग 45 एकड़ में ये बना हुआ है और इसमें अलग अलग खेलों की बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं, जिसमें हमारे यहाँ कोचिंग जो चल रही है वो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, हैंडबॉल, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, जूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, ये सब खेल और कुश्ती, ये सब गेम यहाँ पर।
0: अभी हाल ही में कौन सा लेटेस्ट खेल गतिविधि चल रही थी?
1: अभी बिल्कुल बैडमिंटन खत्म हुई है 1 तारीख को। पूरा राज्य के बच्चे यहाँ आए हुए थे और उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं वो लोग नेशनल खेलने भी जा रहे हैं, तो इसलिए प्रतियोगिता का बहुत
0: ट्रायल हुआ था उसका।
1: प्रतियोगिता कम ट्रायल था
0: जी।
1: एसोसिएशन द्वारा वो आयोजित की गई थी, क्योंकि यहाँ पर अपने खेल विभाग के अलावा अगर एसोसिएशन या क्लब्स या कोई भी आकाशवाणी भी चाहे तो अपने कोई प्रतियोगिता छोटी सी करा सकते, तो कोई भी जना उसको कर सकते।
0: तो जो बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए?
1: नेशनल नहीं जाएंगे,
0: राष्ट्रीय
1: स्तर यूपी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे
0: बैडमिंटन में।
1: बैडमिंटन में इसी प्रकार से अलग अलग गेमों में चलता रहता
0: जी। और इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें यहाँ नवोदित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो अपने खेल को निखार कर, प्रोग्रेस करके, उसमें उन्नति करके अयोध्या मंडल का नाम रोशन करेंगे?
1: ये खेल तो जो मैंने आपको नाम बताया, ये सारे तो लोकल ही बच्चे इसको खेलते रहते हैं और बाहर के भी खेलते रहते हैं। साथ साथ ये स्टेडियम के अंदर 7 जो है गेमों के अंदर हॉस्टल है, और वो भी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ सिर्फ बालिकाओं का ही हॉस्टल है। पूरे प्रदेश से हमारे 135 लड़कियाँ यहाँ पर रहकर खाना, उनकी सुविधाएं, ठहरना और सब चीज़ की दी जाती है, जिसमें हॉकी, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तो कुश्ती और वॉलीबॉल, ये 7 गेम हैं।
0: स्थानीय खिलाड़ियों के अलावा जाहिर सी बात है यहाँ जिले के आसपास के ग्रामीण अंचलों से या प्रदेश के बाहर के भी खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे, ऐसे में क्या खिलाड़ियों को

0: छात्रावास की भी सुविधा है यहाँ रहने के लिए?
1: 7 गेमों के अंदर यहाँ पर हॉस्टल है जिसमें हमारी बालिकाएं रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं का हॉस्टल है तो उसमें वो लोग कर सकते हैं। और इसका सिलेक्शन होने का प्रोसेस जो है जिला स्तर से शुरू हो जाती है। पहले जिला स्तर पे आपने सिलेक्शन होगा,
0: अच्छा।
1: उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मंडल पे जाएंगे, मंडल में जो सिलेक्ट होंगे वो फिर स्टेट में जाएंगे, फिर एक स्टेट में उनको 15 दिन का एक कैंप लगाया जाएगा, सेंट्रल कोचिंग कैंप कहते हैं
0: जी।
1: उस 15 दिन बाद जो कोच होगा उसमें से फिर जितनी सीटें होंगी 2, 5, 7 वो बच्चे जो टॉप के होंगे उनको ले लिया जाता है, जिसको सरकार की ओर से रहना खाना पीना सब चीज़ फ्री।
0: तो उसमें किन किन खेलों के लिए यहाँ पे छात्रावास है? क्योंकि सभी खेलों के लिए तो नहीं होगा।
1: हॉकी है, हैंडबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है। लगभग इसमें हर एक में 20-20 बच्चे रहते हैं, लड़कियाँ जो कि खेलेंगी या प्रैक्टिस करती हैं
0: जी। छात्रावास में रहकर खिलाड़ी को अपने खेल कौशल को निखारना है तो उसे एडमिशन के लिए कौन कौन सी औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं? एडमिशन के लिए उसे क्या कुछ करना होता है?
1: देखिए, लोकल अगर आना चाहता है तो लोकल यहाँ पे केवल 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है
0: वार्षिक।
1: वो करके कोई भी जना कर सकता है 18 साल से कम वर्ष का। और अगर 18 साल से ऊपर है वो लोग जो शौकिया खेलने आते हैं या अगर आप भी घूमने आना चाहेंगे या खेलना चाहेंगे तो उसमें 200 रुपये महीना उसको देकर यहाँ पर उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
0: जो स्पोर्ट्स की किट है वो वगैरह फ्री है सब?
1: नहीं, वो सिर्फ उनको हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं उनको होती है, या वो खिलाड़ी जो हमारे यहाँ मंडल में की ओर से राज्य स्तर खेलने जाता है तो उनको जाते वक्त में अयोध्या मंडल की एक किट उनको उपलब्ध कराई जाती है जिससे वो आगे जाके वहाँ पर खेलते हैं।
0: तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर अयोध्या मंडल के किन किन खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में प्रतिभाग किया, उसका क्या परिणाम रहा? अभी हाल ही में कौन सी टीम स्टेट लेवल या नेशनल गेम खेलने गई?
1: नेशनल में अभी जूडो में भी गए हैं,
0: कुछ अच्छा।
1: हॉकी भी जीतती रहती है, हॉकी तो अधिकतर कहीं ना कहीं से हमारा मेडल लेकर आती ही है यहाँ की। वॉलीबॉल से भी 2-3 लड़कियां इस बार सेलेक्ट हुई थी।
0: बच्चों के पेरेंट्स की ओर से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है?
1: उसी की जरूरत है, हम उस फिराक में लगे रहते हैं कि किस बच्चे के माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि माँ बापों के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ता था। जैसे कोच कोचिंग दे रहा है, हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, खिलाड़ी भी खेलने जा रहा है लेकिन घर वाले खाना डाइट या उसका ध्यान नहीं दे रहे, या कोचिंग के समय पे उनके रिश्तेदारी में भेज दिया, घर पे आटा लेने भेज दिया, तो वो सब जो सपोर्ट होता है वो घर से बहुत जरूरी है।
0: कभी कभी जूडो में कहते हैं कि बहुत खतरनाक गेम है, उसको मत खेलो, ऐसा डरा भी देते हैं बच्चों को।
1: जूडो में तो सबसे पहले गिरना ही सिखाते हैं, जब गिरना आ जाता है उसके बाद फिर उनको चोट ही नहीं लगती।
0: जी जी,
1: तो ऐसा कोई नहीं किसी भी खेल में चोट करना।
0: तो खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सक्सेना जी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत भी की गई भारत में। अगर हम अयोध्या और इसके आसपास के ग्रामीण अंचलों की बात करें तो इस मुहिम का कितना असर आप देख रहे हैं?
1: शुरुआत हो गई है असल में खेलो इंडिया की तरफ से। एक तो पहले एक जिला एक खेल करके एक स्कीम है जिसमें हम लोगों को एथलेटिक्स दिया गया, एथलेटिक्स में एक कोच है, उसमें 25 बच्चे उसमें सेलेक्ट कराए गए, उनको किट और वो सब दी जाती है।
0: अच्छा।
1: किट है, जूते, ब्रोजे, सब चीज़ उनको देके और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो वो लोग खेलो इंडिया के तहत आगे जा सकते हैं।
0: अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कितने घंटे अभ्यास उसको ज़रूरी है और डाइट किस तरह की होनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो भगवान द्वारा जो आपका शरीर बना के भेजा है
0: जी,
1: अगर वो सही स्वस्थ और उस तरह करके भेजा तो वो पहली बात तो वो स्पोर्ट्स के अंदर आ सकता है। और कई बार कोई दिव्यांग भी होते हैं तो वो भी उस चीज़ के अलग से उसके अंदर भगवान से कुछ गलती हो गई लेकिन फिर भी वो लोग उसके अंदर निकल आते हैं। तो इस पहले तो हमारा शरीर उस हिसाब से होना चाहिए, हर गेम के लिए अलग तरीके का शरीर चाहिए होता है
0: जी।
1: एथलेटिक्स के लिए पतला तो गोला फेंकने के लिए तगड़ा
0: जी हाँ।
1: किसी में एजिलिटी ज्यादा है, किसी में स्पीड,
0: हाइट वगैरह भी देखी जाती
1: है, हाइट है तो बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलेगा। तो इस तरह करके हर खेल के लिए अलग अलग अलग वो चलता है
0: जी।
1: आपका शरीर होना चाहिए पर फिर उसके अंदर जुनून होना चाहिए बहुत सारे।
0: सबसे बड़ी ये चीज है कि जुनून होना चाहिए, अगर जोश नहीं है तो फिर गेम खेल नहीं पाएगा,
1: फिर उसकी स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ ये सब चीजें होंगी, धीरे धीरे डेवलप कर लिया।
0: अनिमेश जी, हमारे जो पारंपरिक ग्रामीण खेल है, खो खो, कबड्डी है, कुश्ती है, तीरंदाजी है, और ये सभी खेल मिट्टी से जुड़े हुए हैं
1: जी जी।
0: तो इन प्रतिभाओं को आगे लाने और उनके खेल को निखारने का कितना प्रयास इस स्टेडियम में किया जा रहा है?
1: देखिए, कबड्डी में भी है यहाँ पर कोचिंग चलती है, एक महिला है वो कोच है, ऐसे ही हमारे कुश्ती भी चलती है
0: जी।
1: कुश्ती हमारे गद्दे पे होती है पूरे अच्छे से, कबड्डी भी गद्दे पे होती है नए तरीके से, तो ये सब हमारे यहाँ चल रहा है। अभी खो खो का नहीं है लेकिन खो खो के पोल लगाए गए हैं, लेकिन यदि कोच नहीं है तो इसलिए बिना कोच के बच्चे प्रैक्टिस अपने आप बहुत कम कर पा रहे हैं, तो ये कारण इसके है। बाकी हमने 2 गेम तो पकड़ रखे हैं।
0: चलिए, पूरी बातचीत में अगर मुझसे कोई भी बात छूट रही है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्टेडियम के बारे में कुछ और आप विस्तार से बताना चाहें तो बता सकते हैं।
1: जिले में जागरूकता की बहुत जरूरत है, खासतौर के अयोध्या में, क्योंकि वही बात है, एक तो थोड़ा दूर है स्टेडियम हमारे शहर के उससे, तो हमारे आसपास के खिलाड़ी ज्यादा आते हैं।
0: जी,
1: बस यही है कि माँ बाप जो भेजेंगे, जागरूकता रहेगी तभी वो आगे निकल सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आएंगे ही नहीं स्टेडियम तो कोई बच्चा निकलेगा कैसे? तो ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ पर आगे खेले।
0: तो बातचीत खत्म करने से पहले एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे गेम है जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: कबड्डी है, क्रिकेट है। जैसे कबड्डी है तो कबड्डी हमारे मैट के ऊपर कराई जाती है, मिट्टी पे भी कराई जाती है।
0: जी
1: जी, ये खासियत है। क्रिकेट जो है हमारा इससे बड़ा स्टेडियम शायद ही कहीं, जैसे ग्रीन पार्क है
0: जी जी,
1: इतना बड़ा है जिसके अंदर हम अभी जल्द में रणजी भी कराएंगे। हॉकी जो है, हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे खेला जाता है, बाकी सब जो मैदान में खेलते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने एस्ट्रोटर्फ दे रखा है। हैंडबॉल ओपन कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हैंडबॉल जो है इंडोर है, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी हॉल के अंदर कर सकते हैं। स्विमिंग पूल सब जगह एक होते हैं, हमारे यहाँ 3 स्विमिंग पूल
0: है।
1: लर्निंग भी है और मेन भी है, ओलंपिक भी है और डाइविंग पूल भी है। वेट लिफ्टिंग में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जूडो है।
0: अभी जहाँ मैं इंटरव्यू कर रहा था हॉकी प्लेयर्स से, तो वहाँ देखा था मैंने एस्ट्रोटर्फ लगी हुई है, सारी सुविधाएं हैं
1: जी, वो पूरा सुविधा है उसके अंदर। तो वही चीज है, अब जो मॉडर्न जमाने में जिस तरह चल रहा है, जैसे एथलेटिक्स है सिंथेटिक ट्रैक पे होता है, तो हमारे सिंथेटिक ट्रैक है। अब मैदान वाला बच्चा जो मैदान में प्रैक्टिस कर रहा है उस ट्रैक पे दौड़ नहीं पाता है
0: जी जी,
1: लेकिन हमारे अयोध्या के लिए सौभाग्य है कि यहाँ के खिलाड़ी उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और आगे निकलते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी अयोध्या की ओर से। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री अनिमेश सक्सेना जी। आकाशवाणी अयोध्या पर तैयार किया गया खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत AJ अमरजीत सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या में हमने कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत की जो वहां पर अलग अलग खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है?
2: प्रियांश यादव।
0: प्रियांश, आप यहां पर कौन सा गेम खेल रहे हैं?
2: कबड्डी सर।
0: और कब से आ रहे हैं यहां पर?
2: मैं 1 साल हो गया सर।
0: तो नेशनल लेवल पे भी आपने गेम खेला है?
2: यस सर।
0: कहां गए थे खेलने के लिए?
2: छत्तीसगढ़ सर।
0: और पूरी टीम के साथ गए होंगे आप?
2: यस सर।
0: तो क्या परिणाम रहा, कब गए थे आप?
2: जनवरी में।
0: तो ये बताइए, गेम्स तो बहुत से थे, आपने कबड्डी को ही क्यों चुना, ऐसा क्या था इसमें?
2: सर मुझे अच्छा लगा सर, अच्छा खेल
0: लेता हूं, क्योंकि अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है ना। आपका क्या शुभ नाम है?
3: राकेश यादव।
0: राकेश यादव जी, आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रहे हैं?
3: मैं अयोध्या से आता हूँ।
0: किसने बताया आपको कि यहाँ पर इस तरह से सिखाया जाता है, आपको पता कैसे लगा?
3: पहले मैं स्कूल गेम खेला था, स्कूल में तो भैया आते थे प्रैक्टिस करने, उन्हीं के साथ आए।
0: स्कूल में कौन से गेम्स खेलते थे?
3: कबड्डी ही खेलते थे।
0: कबड्डी खेलने में कौन सी टेक्निक जो है सबसे बेहतरीन होती है, जिसमें जीत बिल्कुल लगता है कि अब जीत जाएंगे हम?
3: सर एंकल मारना और उसके बाद चैन मारना।
0: अच्छा,
3: हाँ ये बढ़िया टेक्निक है।
0: कहते हैं सांस का बहुत बड़ा, ब्रीथ का बहुत बड़ा गेम होता है।
3: हाँ ये सर बहुत होता है, उसके बाद ना इसमें डर वर का कोई वही नहीं रहता, बिना डरे खेलो।
0: अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ खेलने गए हैं अभी तक?
3: सर हम आंध्र प्रदेश गए हैं, तेलंगाना गए हैं और इधर बंगाल उंगाल साइड।
0: ये बताइए कि इस गेम में कितनी आपको प्रैक्टिस टाइम देना पड़ता है, कितना अभ्यास करना
3: है? सर न्यूनतम सर सुबह 3 घंटे 3 घंटे शाम तक।
0: तो डाइट भी कुछ विशेष बताते हैं कि कुछ भी खाइए?
3: नहीं सर, और बताते हैं डाइट कुछ भी थोड़ी ना, सर घोटाले खा सकते हैं जब खेलना है तो इतना तो
0: जी।
3: सुबह डाइट रहता है।
0: और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किसी भी गेम को खेल रहे हैं अगर, तो हमारी फिजिक बहुत अच्छी रहती है।
3: हाँ ये सब तो अच्छा रहता है
0: ना, और मेंटली भी हम अच्छे,
3: मेंटली भी बढ़िया रहते हैं, फिजिकल भी सब कुछ बढ़िया रहता है बॉडी के लिए।
0: जी जी। आपका क्या नाम है?
4: सौरभ कुमार।
0: आप कब से आ रहे हैं?
4: 2 साल हो गए।
0: 2 साल आपको हो गया?
4: यस।
0: और कहाँ के रहने वाले हैं?
4: अयोध्या जिला।
0: अच्छा, जब आप बाहर खेलने जाते हैं, नेशनल लेवल आप खेलने गए थे,
4: यस,
0: तो वहाँ से भी और भी बाहर से भी बहुत से खिलाड़ी आए होंगे,
4: यस,
0: तो वहाँ पे उनसे मिलकर आपने क्या सीखा वहाँ पर जब बाहर गए?
4: ये सीखा सर और मेहनत करें और अच्छा खेलें। हम लोग हार गए थे वहाँ जाके 1 पॉइंट से फाइनल।
0: क्योंकि जब कभी हार मिलती है तो उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार के आगे जीत होती है।
4: यस।
0: क्योंकि हम किस वजह से हारे तो हम उस पे काम करते हैं, है
4: ना।
0: आपका क्या शुभ नाम है?
5: सत्यम पाल।
0: आप भी ये स्पोर्ट्स स्टेडियम ढाबा सेमर में सीख रहे हैं कबड्डी?
5: जी।
0: कबड्डी खेल आपको क्यों अच्छा लग रहा है?
5: सर ये मिट्टी से जुड़ा है, प्लस इसमें इंटरेस्ट था मेरा।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
5: हम लखनऊ के हैं।
0: तो क्या आप भी नेशनल लेवल कहीं खेलने गए हैं? कहाँ गए?
5: स्कूली गेम मैंने खेला है छत्तीसगढ़ में।
0: अच्छा, तो वहाँ पर जो टीमें और आई होंगी उनसे मिलकर आपको कैसा लगा?
5: उनसे मिलकर अच्छा लगा और ये देखा कि मतलब कैसे रहना चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं और वो लोग कैसे स्ट्रेटजी खेलते हैं।
0: वैसे ब्रीथिंग के लिए क्या आप योगा वगैरह भी करते हैं घर पे?
5: हाँ,
0: क्योंकि इसमें सारा खेल तो सांस रोकने वाला है।
5: हाँ वो तो है, मगर जैसे कि प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस में स्टेमिना बढ़ता है, स्टेमिना से ब्रीथिंग भी बढ़ती है।
0: आपका क्या शुभ नाम है?
6: कोमल यादव।
0: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रही हैं सीखने के लिए?
6: हॉस्टल से।
0: लोकल अयोध्या की रहने वाली हैं?
6: नहीं, बनारस।
0: छात्रावास से यहाँ पे रह रही हैं? अच्छा, तो ये बताइए आपने कौन सा गेम चुना है जो आप सीख रही हैं?
6: 400 मीटर एथलेटिक्स, हमें आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।
0: अभी देखिए इंडिया में जो है 100 मीटर का भी नेशनल रिकॉर्ड टूट गया, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई जो 100 मीटर भी 10 सेकंड के अंदर पूरा कर लेगा। आप एथलेटिक्स में और कौन कौन सी रेस जो है वो सीख रही हैं?
6: 200, 400।
0: आप कितने साल से सीख रही हैं यहाँ पर?
6: अभी तो हम लोग लखनऊ में थे, यहाँ ट्रांसफर हुआ है, एक साल हुआ है।
0: और इसी स्टेडियम में श्रोताओं अब हम मिलने जा रहे हैं कुछ हॉकी प्लेयर्स से। आपका क्या शुभ नाम है?
7: तेजस्वी निषाद।
0: तेजस्वी निषाद जी, आप इस हॉकी को कब से खेल रही हैं?
7: 3 साल होने वाले।
0: लोकल यहीं की रहने वाली है कहीं बाहर से?
7: नहीं, प्रयागराज।
0: प्रयागराज से यहाँ हॉस्टल में रह के
7: साल चयन हुआ है।
0: तो आप कहाँ कहाँ तक खेलने गई हैं?
7: अभी तक दादर से नेशनल खेले हैं, राजगीर में हुआ था और रांची में, राजगीर में कैंप लगा था और रांची में हुआ था।
0: तो नेशनल लेवल में तो वहाँ से बहुत सी टीमें आई होंगी। हाँ। तो आपने वहाँ जाकर क्या कुछ सीखा?
7: यही उन लोग पासिंग से खेल रहे थे
0: जी,
7: अच्छा मिला।
0: क्योंकि जब तक हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, बड़ी टीमों के साथ जाएंगे नहीं, तब तक हमारे खेल में उतना निखार नहीं आएगा,
7: नहीं
0: है ना। तो हॉकी को ही आपने क्यों चुना, ऐसा क्या था हॉकी में?
7: हॉकी गेम मतलब कि इंटरेस्ट था।
0: जी जी, जैसे फुटबॉल भी बहुत ही स्पीड का गेम है और हॉकी भी बहुत स्पीड का गेम है।
7: नहीं, हॉकी में इंटरेस्ट था इसलिए।
0: जी जी, तो हॉकी में आपका जो आइडियल प्लेयर कौन सा है, किसको आप पसंद करती
7: हैं? सविता पुनिया।
0: आपका क्या शुभ नाम?
8: सर शिवम।
0: शिवम, आप कहाँ से हॉकी खेलने यहाँ पे आ रहे हैं?
8: सर यहीं बगल से, 2-3 किलोमीटर।
0: आप भी कहीं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेलने गए हैं?
8: जी सर।
0: कहाँ गए हैं?
8: सर अंडर 19 खेले थे जालंधर में। अच्छा। 2023 में, और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेले थे दिल्ली में, वो भी 2024 में, और सब जूनियर खेले थे वो भी दिल्ली में खेले थे 2022 में।
0: जब पूरी टीम के साथ यहाँ से आप गए होंगे?
8: जी सर।
0: तो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर पहुंचकर आपको दूसरे खिलाड़ी भी वहाँ मिलते हैं?
8: जी सर।
0: तो क्या कुछ वहाँ पे आपको सीखने को नई चीजें मिलती हैं?
8: सर सबसे पहले तो ये रहता है कि हमें टीम का कॉम्बिनेशन बना के मैच जीतना रहता है, बाकी अदर टीमों को मैच देख के सीखना रहता है कि अगली टीम कैसे खेल रही है, हमारे अंदर क्या कमी है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
0: आपका शुभ नाम?
9: चंचल मौर्य।
0: चंचल मौर्य, आप कहाँ से इस स्टेडियम में आ रही खेलने के लिए?
9: जी मैं मलिकपुर गांव से आती हूँ और मैं बहुत ही छोटे घर से बिलोंग करती हूँ। तो
0: आप जब वहाँ से आती हैं तो जो लोग गांव में आपको पूछते होंगे तो वहाँ भी आप प्रमोट करती हैं, लोगों को बताती हैं कि चलिए मेरे साथ आप भी खेलिए वहाँ?
9: जी बोलती हूँ, पर मेरे साथ मेरी फ्रेंड आती है गांव से ही है, तो मैंने तो हॉकी स्टार्ट तभी किया उसकी वजह से, वो आती थी तो उसको देख के।
0: आप कब से खेल रही हैं?
9: मुझे 4 साल हो गए हैं।
0: 4 साल हो गए आपको, तो आप तो फिर कहीं बाहर भी खेलने गई होंगी?
9: जी नेशनल खेला है।
0: कहाँ पे गई थी नेशनल गेम खेलने?
9: आंध्र प्रदेश काकीनाडा में हुआ था चैंपियनशिप 2025 में।
0: क्या रिजल्ट रहा वहाँ पे?
9: मेरा गेम थोड़ा लूज था कि जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ नहीं खेल पाई, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। पहली बार मैं गई थी खेलने तो वहाँ
0: मेन चीज ये होती है ना, जैसे मान लीजिए आप नेशनल लेवल खेलने गई हैं तो अगर नहीं भी जीती हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है वहाँ पर।
9: बहुत कुछ मिला, हमें क्या कमियां हैं, हम क्या अपनी गेम को और कितना डेवलप कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी गेम में, वो सारी चीज सीखने को मिली मुझे।
0: ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि हॉकी में जो है थकावट बहुत जल्दी हो जाती है?
9: जी लगता है, जैसे 70 मिनट का मैच होता है उसमें भी 4 क्वार्टर होते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है, हम प्लेयर चेंज करके खेल लेते हैं।
0: आइडियल प्लेयर आपका कौन सा है, किसका गेम आपको सबसे अच्छा लगता है?
9: मेरा वंदना कटारिया है और बॉयज में है अभिषेक।
0: आपका शुभ नाम?
10: सबनीलाक्षी।
0: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आई खेलने?
10: सर हम ये बगल के 1 किलोमीटर पड़ता है चांदपुर हरबंस, सर यहाँ से आते हैं।
0: तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया होगा, घर के पास ही आपको स्टेडियम मिल गया। तो आपने जब हॉकी को पहली बार चुना तो आपको कैसा लगा?
10: सर हमें बहुत अच्छा लगा सर, पहले तो हॉकी पसंद आई है स्टेडियम में।
0: जी, इसके अलावा जब कभी आप खाली होती है तो जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं टीवी पे आते हैं उनको अभी आप देखती होंगी?
10: सर फोन पे।
0: तो आपका भी कोई अच्छा प्लेयर है?
10: सविता पूर्णिया।
0: चलिए आकाशवाणी अयोध्या की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने खेल में इसी तरह से अपना खेल निखारते रहें और अयोध्या जनपद का नाम रोशन करें। धन्यवाद आप सभी। और अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं और सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 28 जून को खेले गए ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की रेस से भारतीय टीम को बाहर कर दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में 7 महीने पहले 50 ओवर्स के एक दिवसीय मैच का वर्ल्ड कप जीतकर अपने नाम किया था। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने 171 रनों के लक्ष्य को एक ओवर बाकी रहते ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंदों में 56 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 6 चौकों के साथ अंतिम ओवर में हरमनप्रीत ने 3 छक्के भी लगाए। आखिरी ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 23 रन बटोरकर टीम का स्कोर 170 तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप स्टेज में भारत ने 5 मैचों में से 3 मैच जीते, लेकिन अंतिम मुकाबले में हार के कारण टीम शीर्ष 2 में जगह बनाने से चूक गई और टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। वनडे विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम का भले ही T20 विश्व कप का सफर जल्दी खत्म हो गया, लेकिन टीम ने क्वालिफाई कर एशिया का कोटा हासिल कर लिया। साथियों, क्रिकेट में जब हम चैंपियन बनते हैं तो हमें पूरी टीम वर्क के साथ लगातार मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं और फिर से चैंपियन बनते हैं। आज मेंस क्रिकेट टीम में इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि 3 क्रिकेट की टीमें तैयार की जा सकती हैं, लेकिन महिला क्रिकेट टीम में वैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने T20 के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। 125 के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में ही पूरा कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराकर फाइनल में बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला किया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये चौथी भिड़ंत थी। इसके पहले तीनों ही बार जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी और चौथी जीत भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही, उसने 7वीं बार खिताब जीता है। उसके अलावा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड एक एक बार चैंपियन बनी है। फाइनल में इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 150 रन ही बनाए, ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 18वें ओवर्स में 3 विकेट खोकर बना लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से 7वीं बार 7वें महीने में ये जीत हासिल की। यही नहीं, वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप भी 7 बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया टीम की विकेट कीपर बेथ मुनी को चुना गया। इस मैच में मुनी ने 64 रन बनाए। लिचफील्ड ने 16 गेंदों में 48 रन बनाए। इन दोनों ने मिलकर टीम के लिए 100 रन की पार्टनरशिप भी की। सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 5 जुलाई को मैनचेस्टर इंग्लैंड में 15 साल 99 दिन में इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 में अपना पहला मैच खेलकर सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सिर्फ तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। भारतीय पारी के तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर पहली बार वैभव के सामने आए। वैभव ने घुटना टेकते हुए पहली ही गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। ये उनके इंटरनेशनल करियर का पहला छक्का था। वैभव ने इस मैच में 10 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज किया। हालांकि उनका पहला इंटरनेशनल मैच जीत के साथ यादगार नहीं बन सका। इंग्लैंड ने 191 रन का टारगेट 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दूसरे यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं। पाकिस्तान के हसन रजा सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 साल 227 दिन की उम्र में डेब्यू कर लिया था। और उधर महान बल्लेबाज द वॉल के नाम से मशहूर और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने आधिकारिक तौर पर भारत की अंडर 19 में अपना सफर शुरू कर दिया है। श्रीलंका में श्रीलंका अंडर 19 के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल वनडे मुकाबले में अन्वय को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो उनके क्रिकेट करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राउंड ऑफ 32 की कड़ी चुनौतियों और उलट फेरों के बाद अब टूर्नामेंट में केवल शीर्ष 16 टीमें ही बची हैं, जिनके बीच खिताबी जंग और तेज हो गई है। राउंड ऑफ 32 का सबसे चर्चित मुकाबला अर्जेंटीना और केप वर्डे के बीच रहा। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने गोल किया, लेकिन केप वर्डे ने शानदार संघर्ष करते हुए मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। अंत में अर्जेंटीना 3-2 से जीत कर अगले दौर में पहुंच गया। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों में कनाडा, ब्राजील, पैराग्वे, मोरक्को, नॉर्वे, फ्रांस, मेक्सिको, इंग्लैंड, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, मिश्र, अर्जेंटीना और कोलंबिया शामिल हैं। सभी टीमों ने अपने अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले जीतकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और फ्रेंड्स, अब टूर्नामेंट पूरी तरह से नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है, जहां हर मैच करो या मरो का होगा। अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, जबकि मोरक्को, नॉर्वे, कनाडा और कोलंबिया जैसी टीमें उलटफेर करने की ताकत रखती हैं। राउंड ऑफ 16 के विजेता क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए संघर्ष करेंगे। अब हर मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जिससे प्रतियोगिता का रोमांच और बढ़ता जाएगा। निशानेबाजी। होनहार निशानेबाज जतिन ने जर्मनी में आयोजित जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया है। जतिन ने कड़ी मेहनत की, उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अर्जित किए।

0: खंडवा जिले के 18 वर्षीय कुश्ती खिलाड़ी नीरज पटेल ने थाईलैंड में एशियन कुश्ती में जापान के नारुसेम्बा को 4-3 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया। नीरज ने अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में प्रदर्शन करते हुए ये पदक हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने 28 जून को लंदन में खेले गए अपने अंतिम FIH प्रो लीग मुकाबले में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हराकर अभियान का शानदार समापन किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला गोल रहित रहा। इसके बाद भारत ने शूटआउट में जीत दर्ज कर बोनस अंक हासिल कर लिया। शूटआउट में भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकरा और हार्दिक सिंह ने अपने प्रयास से गोल किए। वहीं शानदार डिफेंसिव प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ने पूरे अभियान में 4 मैच जीते, 5 ड्रॉ खेले, 2 शूटआउट बोनस अंक अर्जित किए और 7 मुकाबलों में हार का सामना किया, जबकि पाकिस्तान अपने सभी 16 मुकाबले हार कर सबसे निचले स्थान पर रहा। बेल्जियम ने टूर्नामेंट चैंपियन के रूप में 39 अंकों के साथ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया है। आकाशवाणी अयोध्या केंद्र पर तैयार किए गए खेल दर्पण कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अपने बरसों पुराने रेडियो मित्र AJ अमरजीत को आज्ञा दीजिए। खेल दर्पण में वाचन, संकलन और संपादन अमरजीत सिंह का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आज के कार्यक्रम से अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ एवं 100.1 FM पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राग शुद्ध नट में मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग शुद्ध नट। गायक थे मल्लिकार्जुन मंसूर। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: सभी समाचार के साथ मैं भव तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा

घोषणा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।